103.7 MHz पर हम आकाशवाणी FM शिमला से बोल रहे हैं। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 23 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी FM शिमला से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 में अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो आप कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से

0: ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realise this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the Inclusive Human Development Framework. Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance

देखिए, जहाँ ईश्वर की भक्ति हम करते हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर कष्टों से, दुखों से छुटकारा देकर एक असीम शांति का एहसास करवाता है। और जब हम अपनी तकलीफ़ों को उस ईश्वर के चरणों में रख देते हैं तो वो ईश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है हमें अपने गले से लगाता है। तो चलिए भक्ति रस में खो जाते हैं। आज की इस प्यारी सुबह का आगाज़ करते हैं इस गणेश वंदना के साथ।

तो देखिए, इस प्यारी सी सुबह का आगाज़ हमने भक्ति रस के साथ किया है। भक्ति रस जब हम अपने दिन की शुरुआत में शामिल करते हैं तो देखिए, यकीन मानिए पूरे दिन के कष्ट हम ईश्वर के चरणों में रख देते हैं। ईश्वर के चरणों में जब हम जाते हैं तो वो हमें अपार शांति, अपार प्रेम और अपार उस आनंद से भर देता है जो हमें ये संसार कभी भी नहीं दे सकता। तो आइए ऐसे ही एक भक्ति रस भजन में हम डूब जाते हैं इस कुर्बानी के साथ।

भक्ति रस से भरपूर कार्यक्रम हिमांजलि का आनंद ले रहे हैं आप एफएम शिमला पर। देखिए, ईश्वर के चरणों में वो असीम शांति है जो हमें दुनिया की कीमती से कीमती दौलत खर्च करके भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो जब भी हम किसी कष्ट में हो, परेशानी में हो या दुनिया की चिंताओं से घिरे हों, तो ईश्वर के चरणों में आइए और उसकी भक्ति भजनों में अपने आप को लौलीन करके देखिए। यकीन मानिए, ये असीम शांति और जीवन को अपने प्रेम से भर देगी और आपको हर एक कष्ट से निजात दिलाएगी और ईश्वर की अनुभूति का एहसास भी करवाएगी। तो चलिए, इस असीम शांति से भरा ही एक और भजन सुनते हैं।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

तो जब आपने आज के दिन की शुरुआत भक्ति रस से की है तो यकीन मानिए आज का दिन आप सभी को हर कष्ट दुखों से दूर करके ईश्वर की असीम शांति से भरेगा। तो चलिए इसी भजन के साथ आज के हिमांचली कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला ट्यून किया है आपने। समय 6:40, आइए सुनते हैं मानस कान। स्वर है लता मंगेशकर, उत्तरा कलकर और साथी के, संगीतकार सतीश भाटिया।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहाँ राम के रूप में परम ब्रह्म और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

मानस गान कार्यक्रम अभी आपने सुना। वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला ट्यून किया है आपने। 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

0: तो देशगान अभी आप सुन रहे थे 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:57 समय है FM न्यूज़ हेडलाइंस का। नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। 26 मई 2014 से कल 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिसे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान स्थापित करने की खुशी और उनकी दीर्घायु की कामना में कल प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सोलन में भाजपा शहरी मंडल द्वारा इस मौके पर आयोजित हवन यज्ञ के बाद भारत सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कई विकराल समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक देश को इन समस्याओं से उबारा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से आह्वान किया है कि वह जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। राज्यपाल कल शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर व निशुल्क दंत स्वास्थ्य जांच शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने बाद में अखिल भारतीय कलाकार संघ के वार्षिक समारोह और अखिल भारतीय नाट्य व नृत्य प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिमला में श्रम व रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समय और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: FM न्यूज़ हेडलाइंस सुन रहे थे आप ट्यून इन है 103.7 MHz FM शिमला पर।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7
1: मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला सुन रहे हैं आप।

0: सुबह के 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी समाचारों के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। सुबह के 7:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
1: गंगा तट पर खड़े होकर भगवान श्री राम ने केवट को आवाज लगाई, अरे केवट भैया, नौका लाना। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है कि जिन चरणों से श्री गंगा जी का उद्भव हुआ उसी को पार करने के लिए श्री हरि स्वयं नाव मांग रहे हैं। भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट ने नाव लाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, भगवान, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आपके चरण रज में ऐसी कोई जड़ी है जो अपने स्पर्श से मनुष्य बना देती है। प्रभो, मैंने सुना है कि गौतम मुनि की पत्नी जो शिला रूप थी आपके चरण छूते ही सुंदर स्त्री हो गई। हे नाथ, मेरी ये नाव तो काठ की है और पानी में रहते रहते ये काठ और भी नर्म हो गया है। मेरी ये नाव यदि स्त्री बन गई तो ना तो मैं आपको पार उतार पाऊंगा और ना ही अपनी पत्नी को समझा पाऊंगा। इससे मेरे परिवार में कलह उत्पन्न हो जाएगा, अतः आपके पैर धुलवाकर ही मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। यदि आप पैर नहीं धुलवाना चाहते हो तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर कमर तक जल है, उसकी मैं आपको थाह दिखला देता हूँ, वहां से पैदल ही पार हो जाइए। हे नाथ, मैं इस नाव के अलावा और कोई जीविका उपार्जन का साधन भी नहीं जानता, इसी के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुझे महाराज दशरथ की सौगंध है, मैं चरण धोकर आपको नाव पर बैठाकर पार कर दूंगा। ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गईं और उन्हें क्रोध आया कि ये केवट हमारे पिताश्री तक पहुंच रहा है। इस पर केवट ने श्री लक्ष्मण जी की तरफ देख कर कहा, हे नाथ, पिछले जन्मों में जब मैं कच्छप था और आप शेषनाग रूप में विराजमान थे, तब मैंने क्षीर सागर में प्रभु के चरण स्पर्श करने की बार बार कोशिश की, लेकिन आपने मुझे अपनी फुंकार से दूर हटा दिया और चरण स्पर्श से वंचित कर दिया। हे वीरवर, अब भले ही आप मुझे तीर मारें, लेकिन जब तक मैं पैर पखार नहीं लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। केवट के इस प्रकार के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबू उतार ही पारू। भगवान के वचन सुनकर केवट ने अपनी पत्नी और पुत्र को बुलाया, पूरा परिवार भगवान को घेर कर बैठ गया। केवट शीघ्र ही कठौते में जल भरकर लाया और बड़े भाव से प्रसन्न होकर पाद प्रक्षालन करने लगा। भगवान के एक पैर को कठौते में रखकर धोने लगा तो भगवान श्री राम को एक पैर जमीन पर रखकर खड़ा होना पड़ा। तब श्री राम ने केवट से कहा, जल्दी करो, एक पैर पर कैसे खड़ा रहूं, अन्य कोई सहारा भी नहीं है। तब केवट बड़ी चतुराई से भोले अंदाज में कहता है, हे प्रभु, आपको यदि सहारा चाहिए तो अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए। तब भगवान श्री राम ने अपना एक हाथ केवट के सिर पर रख दिया। देवता इस दृश्य को देखकर पुष्प वर्षा करने लगे और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। चरण धोकर केवट ने चरणोदक का परिवार सहित पान किया, फिर अपने पितरों के उद्धार की प्रार्थना की। अब श्री राम लक्ष्मण जी तथा जगत जननी श्री सीता जी को नाव पर चढ़ाकर गंगा के पार ले गया। नाव से उतरने के बाद श्री राम ने सोचा कि हमने केवट को उतराई में कुछ नहीं दिया तो प्रभु को संकोच हुआ। इस संकोच को श्री सीता जी ने महसूस किया और अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारकर श्री राम की ओर बढ़ा दी। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी लेकर केवट से कहा, केवट भैया, अपनी नाव की उतराई लो। तब केवट ने चरण पकड़ लिए और बोला, हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस आपकी कृपा बरसती रहे। हे कौशलेंद्र, वैसे मैं आपका जाति भाई हूं तो आपसे क्या लेना, क्योंकि मेरा भी काम पार करना है और आपका भी काम पार लगाना है। हे दशरथ नंदन, आपके श्री चरणों का जो अवसर ब्रह्मा शंकर और जनक जी को प्राप्त हुआ वही अवसर आज मुझे भी मिला है। हे नाथ, मुझसे पहले आपके चरण श्री जनक महाराज ने धोए, श्री सीता जी चरण धोने वाली की पुत्री हैं और मैं भी तो चरण धोने वाला ही हूँ। यदि मैं अंगूठी को लेता हूँ तो ये कैसा चरण धोने वाला हूँ कि उस बेटी से अंगूठी को उतराई में ले लूं। हे रघुनंदन, उस बेटी को मैं कुछ दे नहीं सकता तो ले भी नहीं सकता। भगवान जब 14 वर्ष के बाद वापस आए तो केवट से मिलन हुआ। भक्तराज केवट अपने आप में अनोखा, विचित्र, अद्भुत, बेजोड़, मोहक, रमणीय, आकर्षक तथा आनंदपूर्ण

0: और अलबेला भक्त है, जो प्रकृति से धार्मिक, श्रद्धालु, पवित्र और पुण्यात्मा भी है। इसीलिए केवट को प्रभु श्री राम की कृपा का उत्कृष्ट प्रसाद प्राप्त हुआ।
1: चिंतन, ये कार्यक्रम सुन रहे थे अभी आप, विषय राम, राम भक्त केवट, स्वरवाचक डॉक्टर हुकुम शर्मा के थे। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। तो चलिए अब आपको बता दें उन कार्यक्रमों के बारे में जिन्हें आज आप सुनेंगे FM शिमला पर। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:15 पर आप आनंद लीजिएगा गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:00 और 8:15 पर आप सुन पाएंगे। लोक संगीत 8:32 पर सुनेगा। आज हमारा मुख्य कार्यक्रम 8:45 पर रेडियो डॉक्टर रहेगा। फिल्म संगीत दिन में 9:00 सुनिएगा। प्रादेशिक समाचार आप 9:20 पर सुनेंगे। 9:31 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप। सदाबहार गीत कार्यक्रम आप सुबह 11:00 सुनेंगे और 11:05 पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम सुनिएगा। दिन में 11:30 पर पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। 12:10 पर फिल्म संगीत और 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनिएगा।

दिन में 1 बजे आप सुनेंगे फिल्म संकेत। सबरंग कार्यक्रम दिन में 2 बजे आप सुन पाएगा और 2:30 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम शिखरों के स्वर सुनिए। 3:05 पर जिले की चिट्ठी होगी और दिन में 3 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे। 3:10 पर शाम फिल्म संगीत होगा जो पुराने फिल्मी गानों पर आधारित रहेगा। युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युवानी 3:30 पर सुनिएगा और मुख्य कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा शाम 4 बजे सुनिएगा। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत मंडियाली कार्यक्रम का समय शाम 5 बजे रहेगा। 5:20 पर पंगवाली कार्यक्रम और लोकगीत 5:50 पर प्रादेशिक समाचारों का समय होगा शाम 6 बजे। कांगड़ी कार्यक्रम सुनेगा शाम 6:06 पर। 6:35 पर लाहौली कार्यक्रम, 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम और शाम 8 बजे भूले बिस्तरे गीत आप सुनेंगे। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 6 बजे और 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से ही आप सुनेंगे। रात्रि 8 बजे भूले बिस्तरे गीत सुनेगा। 8:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। समाचार संध्या न्यूज 8:09 जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा 8:45 और 9 बजे का समय रहेगा।

9:15 पर एक फिल्म से कार्यक्रम होगा जिसमें एक ही फिल्म के गानों का आनंद लीजिएगा। 9:30 पर आपके दिल की आवाज़ आपके ईमेल आपके संदेशों के जरिए पहुंचेगी हम तक, दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में। रात्रि 10 बजे गज़लों का आनंद लीजिएगा और सदाबहार नट में कार्यक्रम रात्रि 10:30 पर सदाबहार नट में सुनिएगा और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार होंगे। तो ये हैं वो तमाम प्रोग्राम जिन्हें आज आप आकाशवाणी शिमला पर सुन सकेंगे 103.7 MHz पर।

हर नई सुबह में हमें ये अवसर दिया जाता है कि हम कल से बेहतर अपने आज को बना सके। गुड मॉर्निंग लिसनर्स, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम। हिमाचल की वादियों से निकलती ताजगी भरी सुबह की सुनहरी किरणों के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आपका आज का दिन खुशियों से, उत्साह से और नई एनर्जी से भरपूर हो। तो चलिए गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम का आगाज करते हैं संगीत के साथ।

0: गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम सुन रहे हैं आप एफएम शिमला पर। कार्यक्रम जारी रहने वाला है संदेश के बाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें, बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है जनसांख्यिकी आर्थिक स्थिति घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है कंफ्यूजन होता है आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं आप, तो चलिए अब गुड मॉर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यानी आज है 11 जून 2026 और आज ही के दिन वो घटनाएं जो पूरी दुनिया में घटित हुई थी यानी आज के दिन को खास बनाती है। चलिए इस प्रोग्राम में बात करेंगे ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का और इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर रीटा पामा। तो चलिए जी बताते हैं आपको उन घटनाओं के बारे में। देखिए 11 जून 1184 ईसा पूर्व ट्रोजन युद्ध के दौरान ट्राय शहर को जलाकर आज ही के दिन नष्ट कर दिया गया था। साथ ही सन 1935 में आज ही के दिन अमेरिकी इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रांग द्वारा दुनिया के पहले FM रेडियो का प्रसारण

प्रदर्शन भी किया गया था। यानी एफएम रेडियो का प्रसारण बहुत पुराना है, जो सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। सन 2010 11 जून के दिन ही दक्षिण अफ्रीका में पहली बार फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी, जो अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित पहला फुटबॉल विश्व कप था।

आज ही के दिन 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट इलाहाबाद की स्थापना की गई थी। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानी और काकोरी कांड के प्रमुख नायक राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 11 जून को आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए, जानकारियां तो आपसे साझा करते ही रहेंगे हम, लेकिन आपको जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है वो रहता है संगीत का। तो चलिए एक और गाना सुनवाते हैं आपको इस प्रोग्राम में।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम जारी रहने वाला है एफएम शिमला पर इस संदेश के बाद।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता

देखिए, मुस्कुराहट आप हमेशा अपने चेहरे पर रखें। मुस्कुराहट पर रोशनी जो होती है वो आपके चेहरे को खिलखिला देती है। जब चेहरे पर मुस्कुराहट की रोशनी हो तो हर मुश्किल रहा वो आसान बना देती है। इसलिए परिस्थितियां जैसी भी हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बखेर कर रखिए, ताकि आपके दिन के साथ साथ आपसे मिलने वालों का दिन भी खुशनुमा और ताजगी भरा बना रहे। तो चलिए जी, गुड मॉर्निंग शिमला में कुछ और बातें करते हैं जो ऐतिहासिक घटनाएं बनकर इतिहास में रह गई। 2008 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में आज ही के दिन शामिल किया गया था।

आज ही के दिन 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में कमेटी ऑफ फाइल 11 जून को ही तैयार की गई थी। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली के ताराशाह मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्रों यानी एलाइड फोर्सेस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इतालवी वायुसेना ने माल्टा पर हमला किया था आज ही के दिन।

और आज ही के दिन यानी 11 जून को दिग्गज नेता राजेश पायलट का सड़क दुर्घटना में निधन आज ही के दिन हुआ।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

देखिए श्रोताओं, सुबह की ताज़ी हवा और पॉजिटिव विचार साथ ही संगीत का साथ हमारे दिन को बहुत ही खूबसूरत और शानदार बनाता है। जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है। तो चलिए गुड मॉर्निंग शिमला के ज़रिए हम भी कोशिश करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो, अच्छा म्यूज़िक आपको सुनवाए, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपको बताएं। तो चलिए ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन इस संगीत के और गीत के बाद।

जिंदगी की किताब का हर दिन एक नया पन्ना है, इसे खूबसूरती के साथ अपनी जिंदगी पर लिखिए और देखिए कुछ ऐसी घटनाएं भी इतिहास में घटी हैं जो जिंदगी के पन्नों पर लिखी गई हैं, कुछ सुनहरी अक्षरों में और कुछ काले अक्षरों में। तो हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं की जो आज ही के दिन घटी थी पूरी दुनिया में। तो आज ही के दिन 1982 में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक स्टीव

स्पेलबर्ग स्पेलबर्ग की ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलीज हुई थी आज ही के दिन 1987 में, ब्रिटेन में एक नया रिकॉर्ड बना था आज ही के दिन। इस दिन मार्गरेट थैचर लगातार तीसरी बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो 160 वर्षों में पहली बार हुआ था, 160 वर्षों का रिकॉर्ड था ये। और सन 2006 में आज ही के दिन नेपाल में राजशाही कांड हुआ था। नेपाल की संसद ने सर्वसम्मति से राजा के वीटो अधिकार को समाप्त कर दिया था आज ही के दिन। आज ही के दिन वहाँ लोकतांत्रिक जो है वो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था और राजशाही का अंत हुआ था।

तुझी रोजाना अब गुड मॉर्निंग शिमला में सुनते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में और संगीत का आनंद तो आप लेते ही हैं, तो हम भी आपको बिल्कुल भी वंचित नहीं रखेंगे संगीत से। चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा एंजॉय करते हैं।

तो देखिए, ज़िंदगी की किताब का हर दिन एक नया पन्ना है, इसे खूबसूरती के साथ लिखिए, क्योंकि हमारा गुजरा एक एक दिन और हमारे उस दिन की यादें हमारे भविष्य की सबसे कीमती दौलत है। इसी के साथ आज के गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम को देते हैं अभी के लिए यहीं पर विराम। तो चलिए जी, 7:55 सुबह के हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं उन कार्यक्रमों के बारे में जिन्हें आज FM शिमला पर 103 पर आप इंजॉय करेंगे हमारे साथ। 8:30 पर अब से कुछ ही पलों में आप लोक संगीत कार्यक्रम सुनेगा। रेडियो डॉक्टर 8:45 पर ये कार्यक्रम सुनेंगे आप। विषय है अस्थमा यानी दमा, विषय पर डॉक्टर संजीव प्रभाकर से सपना ठाकुर की बातचीत। सदाबहार गीत कार्यक्रम आप सुनेगा सुबह 10:00। 9:31 पर सुबह ही कुदरत के रंग, जो फिल्म म्यूजिक पर आधारित रहेगा कार्यक्रम। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम होगा सुबह 11:05 पर और 12:10 का समय फिल्म संगीत का रहेगा FM शिमला पर।

1:10 पर फिल्म संगीत सुनिएगा और सबरंग कार्यक्रम का समय दिन में 2 बजे होगा। शिखरों के स्वर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम दिन में 2:30 पर और 3:30 का समय युवाओं के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी का होगा। कृषि जगत कार्यक्रम शाम 7:10 पर सुनिएगा और रात्रि 8 बजे भूले बिस्तरे गीत, 8:30 पर फिल्म संगीत FM शिमला पर एंजॉय करेंगे आप। एक फिल्म से कार्यक्रम का समय 9:15 पर होगा। 9:30 पर आपके दिल की आवाज़ आपके संदेशों के द्वारा हमारे तक पहुंचेगी। दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में 9:30 पर। रात्रि 10 बजे गज़लें, 10:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रमों का आनंद लीजिएगा। तो ये हैं वो तमाम प्रोग्राम जिन्हें आप FM शिमला पर आज सुन सकेंगे। सात बजकर 57 मिनट हुए हैं। समय है FM न्यूज हेडलाइंस का। नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। राज्य सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्कों की एंट्री फीस बढ़ा दी है। वन विभाग ने वन्यजीव अभयारण्यों और नेशनल पार्कों में प्रवेश, फोटोग्राफी, फिल्म शूटिंग, रिसर्च और ड्रोन उपयोग

0: को लेकर नई शुल्क व्यवस्था को लागू कर दिया है। भारतीय लोगों को 3 दिनों तक 300 रुपये प्रतिदिन और उसके बाद हर दिन 500 रुपये देने होंगे। स्कूल के छात्रों को निर्धारित शुल्क का आधा भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 छात्रों वाले 73 स्कूल मर्ज एवं 0 नामांकन वाले 20 स्कूल और बंद कर दिए हैं। कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार का तर्क है कि स्कूलों के युक्तिकरण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। इस बीच सरकार ने 3 सरकारी कॉलेजों को विलय करने के आदेश वापस ले लिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें डिग्री कॉलेज कुमसेरी, डिग्री कॉलेज रोहनाट और डिग्री कॉलेज जयनगर के विलय के आदेश को वापस ले लिया गया है। राज्य सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के चुनाव में विधायकों के वोट डालने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस संबंध में इतना ही, नमस्कार।
1: FM शिमला 103.7 MHz ट्यून किया है आपने।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून किया है आपने। अब समाचार संध्या मॉर्निंग न्यूज के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
5: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पतालों मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने

0: वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
5: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है। भारत अब आत्म

0: निर्भर सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
3: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the National Vision on Inclusive Human Development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014

0: control shift. AI is not destroying the job market but changing it. There will be jobs aplenty if you update your skills. In white collar circle, this is the best. This is the best of times. And finally, human contribution to global warming highest ever in 2025, says an annual study called Indicators of Global Climate Change. The findings are a further reminder to the rapidly rising global temperatures, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर. प्रातः के 8:30 हुए हैं. एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का समय है. सुनते हैं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस. नमस्कार. एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वास के, विकास के और गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे. भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे. इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे. 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे. जिला कांगड़ा में 29 और 30 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा. अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 1,01,366 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 1,069 बूथ, 21 ट्रांजिट पॉइंट और 190 हाई रिस्क स्थलों पर 2,138 टीमें तैनात रहेंगी. ADC विनय कुमार ने सभी विभागों से अभियान में सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रवासी निर्माण स्थलों और ईंट भट्टों पर रहने वाले बच्चों तक भी पहुंच बनाई जाएगी ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित ना रहे. चंबा जिला के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर की प्रबंधन समिति के पुनर्गठन और बहाल करने की मांग को लेकर सनातन धर्मसभा चंबा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. आवेदन में मंदिर प्रबंधन व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं जताते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई. प्रतिनिधियों ने कहा कि यह मंदिर प्रदेश की महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्ति न्यास नियम के तहत होता है. इस अंक में इतना ही. नमस्कार. आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर.

खुशबू लोक परंपराओं की मिठास और खुश मधुर धुनों का संगम लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं लोक संगीत कार्यक्रम लेकर, जहां पर हर लोकगीत में छिपी है अपने ही लोगों की कहानियां, अपने गांव की यादें और अपनी संस्कृति का गौरव। आइए लोक धुनों के साथ जुड़ें अपनी जड़ों के साथ और महसूस करें अपनी विरासत की अनमोल धरोहर को इस लोकगीत के साथ। आवाज़ है बसंत लाल की।

आज 1:32 एग्जैक्टली हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में। तो देखिए, सुबह की प्यारी धूप के साथ और इस सुहावने मौसम में FM परिवार की ओर से आप सभी का एक बार फिर से मैं रीता पामा स्वागत करती हूँ 103.7 MHz शिमला पर। एक बार फिर आज संगीत के सफ़र के कारवां को ले चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि 8:33 एग्जैक्टली हो चुके हैं। समय है लोक संगीत का। तो लोक संगीत हमारी संस्कृति की आत्मा है, जो पीढ़ियों से हमारे जीवन, रीति रिवाजों और भावनाओं को सुरों में पिरोता आया है। माटी की सौंधी

लोक संगीत का अपना ही महत्व है। लोक संगीत की धुनें हमारे दिन को खुशनुमा बना देती है, हमें हमारी मिट्टी से जुड़ने पर मजबूर कर देती है। ये धुनें जब भी हम सुनते हैं, हम अपने गांव में या अपनी मिट्टी में खो जाते हैं। ऐसे ही नगमे इस प्रोग्राम में रोज़ाना हम सुनवाते हैं आपको। तो चलिए तरसेम पाल शर्मा की आवाज़ में अगला लोकगीत सुनते हैं।

0: तो चलिए इसी लोकगीत के साथ अभी के लिए लोक संगीत प्रोग्राम को देते हैं यहीं पर विराम। 103.7 MHz आपने ट्यून किया है, 8:45 हो रहे हैं, समय है रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम का। विषय है अस्थमा यानी दमा विषय पर डॉक्टर संजीव प्रभाकर से सपना ठाकुर की बातचीत।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। हमारा जीवन सांसों के डोर से बना हुआ है, जब तक दम है तब तक जीवन रहता है। अगर दम के साथ दमा हो जाए तो जीवन स्वास्थ्य समस्याओं से घिर जाता है। आज दमा यानी अस्थमा पर हम बात करेंगे। हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव प्रभाकर। आप इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर संजीव प्रभाकर, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर संजीव प्रभाकर, जैसे कि आज का विषय रखा गया है दमा यानी अस्थमा, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये है क्या?
2: अस्थमा एक बहुत ही फेफड़ों में होने वाली कॉमन और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जो कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रेशो में पाई जाती है। किसी कंट्री में 1% होती है और किसी कंट्रीज में 29% तक भी पाई जाती है। जहाँ तक इसकी गंभीरता की बात करूँगा तो जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है, जीना गाइडलाइंस, जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा जो है 2026 के अकॉर्डिंगली, एस्थमा जो है बड़ी एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर रही है और एट प्रेजेंट जो है इसके 300 मिलियन पेशेंट जो है पाए गए हैं। और साथ में जब यदि हम इसकी मृत्यु दर की बात करें कि कितने लोगों में इस बीमारी से डेथ हो जाती है, तो वो उसका डाटा जो है लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1000 पीपल पर डे जो है डेथ भी हो जाती है। पर ये डेथ उन देशों में होती है जहाँ पे जो है इस बीमारी के लिए जो प्रॉपर ड्रग्स है, इनहेलर है, वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमारे जो लो और मिडिल इनकम वाले कंट्रीज हैं उसमें जो है ये डेथ होती है। अब जहाँ तक इस बीमारी को डिफाइन करने की बात है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। उसमें होता क्या है कि जो हमारे फेफड़ों में जाने वाली सांस की नालियाँ होती है उसमें जो है सूजन आ जाती है, और ये सूजन इस तरह से आती है कि उसके कारण पेशेंट को इस बीमारी के लक्षण आने लग जाते हैं, और ये जो बीमारी जो है जो हम इसका इलाज ना करें और प्रॉपर ना हो तो घातक भी हो जाती है।
1: डॉक्टर संजीव प्रभाकर, जैसे कि आपने बताया कि इस बीमारी से फेफड़े प्रभावित होते हैं, सूजन और संकुचन हो जाता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा की पहचान आम व्यक्ति कैसे कर सकता है, क्या इसके लक्षण क्या रहेंगे, कैसे इसे पहचाना जाए?
2: आमतौर पर जो इसके लक्षण है वो इसमें 3-4 लक्षण होते हैं जो कि हमेशा ग्रुप में होते हैं। जैसे इसमें जो है छाती से छाछ की आवाज आना, फिर छाती में जकड़न हो जाना, खांसी होना, सांस का फूलना, ये इसके मुख्य लक्षण है। पर ये लक्षण और बीमारियों में भी हो सकते हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या कोई लंग्स की और बीमारी है, जैसे ब्रोंकाइटिस है या COPD है, उसमें भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। पर ये जो अस्थमा में जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों में पेशेंट जो है बार बार हमारे पास आता है। हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, बार बार पेशेंट आता है, बीच में वो ठीक भी हो जाता है और फिर कभी भी किसी एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आने से उसके लक्षण फिर एग्रीवेट हो जाते हैं और वो दोबारा से मरीज के पास आता है। आमतौर पर ये जो 3-4 लक्षण है, ये उनमें से 2-3 लक्षण हमेशा अस्थमा में होने चाहिए, तभी हम उसको अस्थमा के लक्षण बोल सकते हैं। सिंगल लक्षण से अस्थमा

0: बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें इनके लक्षणों की ये खासियत होती है कि जो जो लक्षण होते हैं ये समय के अनुसार चेंज भी हो सकते हैं। किसी टाइम में कम लक्षण होते हैं, किसी टाइम में ज्यादा लक्षण होते हैं। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कभी बिल्कुल मिनिमम लक्षण हो, इंटेंसिटी और सिवियरिटी ऑफ जो सिम्टम्स है वो कम हो, और कभी वो जो है जो सिम्टम एकदम अचानक ज्यादा होते हैं। और इसकी पहचान हम हिस्ट्री वाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लक्षण होते हैं वो रात के टाइम में ज्यादा हो जाते हैं। कभी रात को सोए सोए पेशेंट को लगता है कि उसके सांस की ज्यादा दिक्कत हो रही है, खांसी ज्यादा हो रही है और उसकी छाती से शहशह की आवाज़ आने लगती है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मॉर्निंग आवर में उठता है तो उसको लक्षण होने लग जाते हैं। इसी के साथ ही कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद भी जो है लक्षण बढ़ जाते हैं। और या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई ऐसी दवाइयाँ जिससे ये अस्थमा के लक्षण ट्रिगर हो जाते हैं। कई व्यक्ति जब जैसे कोई दर्द की दवाइयाँ जिनको हम एनएसएड्स बोलते हैं, ऐसी दवाइयाँ जैसे कोई पेन किलर वगैरह ऐसी दवाइयाँ लेते हैं तो उसके बाद भी ये लक्षण हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम तीन चार लक्षण एक साथ होते हैं।
1: डॉक्टर संजीव, ये तो हुई लक्षणों की बात कि किस तरह से अस्थमा को आम व्यक्ति पहचान सकता है, तो क्या इसके कोई प्रकार रहते हैं?
0: अस्थमा को हम वैसे कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो जिस बेस पे हम अस्थमा की ट्रीटमेंट करते हैं उसके कॉमन तरीके से जो हम बोलना चाहें तो इसके अस्थमा के जो है एक तो फिनोटाइप्स होते हैं जिसके बेस पे हमने देखना होता है कि कौन सी दवाई हमने पेशेंट को देनी है। जैसे सबसे कॉमन जो अस्थमा होता है वो एलर्जिक अस्थमा होता है, फिर उसके बाद नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, फिर कफ वेरिएंट अस्थमा होता है, फिर आपका लेट ऑनसेट जिसको एडल्ट ऑनसेट अस्थमा भी बोलते हैं, और इस तरह इसके अलावा अस्थमा विद परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन होती है, फिर अस्थमा विद ओबेसिटी। ये पांच छह तरह के इसके फिनोटाइप है। जो अलग अलग फिनोटाइप है इनकी जो है ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है। जैसे जो एलर्जिक अस्थमा होता है उसको हम क्लिनिकल हिस्ट्री वाइज हम डायग्नोज बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि उसकी या तो और जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जैसे एक्जिमा है, स्किन की एलर्जी है, या नाक की एलर्जी जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, इस तरह के पहले हिस्ट्री होती है, या फैमिली में इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह की कंप्लेंट्स की हिस्ट्री होती है, और उसके बाद जो है पेशेंट को लंग की एलर्जी जिसको हम अस्थमा बोलते हैं वो भी हो जाती है। तो इस कंडीशन ये बहुत ही कॉमन होता है एलर्जिक अस्थमा, और इसका ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है जैसे कोई पॉल्यूशन हो या कोई एलर्जन हो या कोई पंजेंट स्मेल हो, तो उससे एकदम ये इस टाइप का अस्थमा जो हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के अस्थमा में यूजली जो छोटे बच्चों में भी इस तरह का अस्थमा होता है, और फैमिली में भी इस तरह की हिस्ट्री होती है कि पेरेंट्स में भी इस तरह की हिस्ट्री होती है कि उनमें ये अस्थमा हुआ हो, उसके बाद उनके बच्चों में भी ये अस्थमा होने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे ही पेशेंट में हम एकदम जो इनहेल फॉर्म में जो ट्रीटमेंट देते हैं, और इसमें जो हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में माना जाता है। साथ में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ हम ब्रोंकोडायलेटर ड्रग भी देते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, उसमें जो है इतना एलर्जन नहीं होता है और ना ही उसमें स्टेरॉइड से इतनी इंप्रूवमेंट होती है, तो हमें अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी डालनी पड़ती है। इस तरह से जो है लेट ऑनसेट अस्थमा है वो यूजुअली फीमेल्स में होता है, और फर्स्ट टाइम जो एडल्ट एज में ही इसकी शुरुआत होती है उसमें भी अलग तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। इसी तरह से जो अस्थमा भी परसिस्टेंट एयर फ्लो होता है वो ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो अस्थमा होने के साथ साथ भी स्मोकिंग करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके एयरवे का जो अंदर के डायमीटर्स है उसमें इस तरह से चेंजेज आ जाती है कि वो फिर वो चेंज नहीं होते और वो रिमॉडलिंग हो जाती है और एयरवे जो है परमानेंटली वो जो है सिकुड़ जाते हैं, तो उसमें फिर हमें अलग तरीके से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इस तरह से कई ओबीज लोग भी होते हैं जिसमें ओबेसिटी विद अस्थमा होता है, उनमें भी हम ट्रीटमेंट अलग करते हैं और उनको वेट रिडक्शन के बारे में बोलते हैं। ये तो एक तरह से हमने अस्थमा को डिवाइड कर दिया। इसके अलावा जैसे कुछ हमारे पास क्वेश्चनर्स होते हैं जिसको हम लास्ट चार हफ्ते के उसकी पेशेंट की हिस्ट्री के अनुसार पूछते हैं कि आपको दिन में कितनी बार अस्थमा के सिम्टम्स आ रहे हैं, हफ्ते में दो बार से ज़्यादा आ रहे हैं, या रात को कितनी बार आपको उठना पड़ रहा है, कितनी बार आपको SOS दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, या आपकी जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो इम्पेयर तो नहीं है। उन बेसिस पे हम इसको वेल कंट्रोल्ड अस्थमा, पार्टली कंट्रोल्ड अस्थमा और अनकंट्रोल्ड अस्थमा भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसपे हम डिवाइड कर सकते हैं अस्थमा को, माइल्ड अस्थमा, मॉडरेट अस्थमा एंड सीवियर अस्थमा। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी डोज से ठीक हो रहे हो। जो बिल्कुल लो डोज से ठीक हो रहे हो तो माइल्ड अस्थमा बोलते हैं, जो आपको मॉडरेट डोज ऑफ ड्रग देनी पड़ रही है तो हम उसको मॉडरेट बोलते हैं, और यदि आपको एडमिट करना पड़ रहा है इनहेलर देके, इंजेक्टेबल दवाइयाँ देके, हॉस्पिटलाइज करके और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट देनी पड़ रही है तो उसको हम सीवियर अस्थमा बोलते हैं।
1: डॉक्टर संजीव, लोगों के मन में ये सवाल तो रहता है कि अगर एक बार अस्थमा हो जाए तो क्या ये ठीक हो पाएगा, कि भ्रांति है कि अगर दमा हो जाता है तो ये ठीक नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: अस्थमा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें ऐसा है कि जे तो ये एलर्जी का अस्थमा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारे को एलर्जन कंट्रोल करना पड़ता है, एलर्जन अवॉइड करना पड़ता है। जितनी हम कोशिश करेंगे, एलर्जन अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जितना हम एलर्जन से दूर रहेंगे

0: अस्थमा कंट्रोल रहता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर कोविड सीजन में क्या पाया गया कि अस्थमा के पेशेंट कम आने लगे हॉस्पिटलों में। इसका मेजर कारण यही था कि मैक्सिमम टाइम लोग मास्क लगाते थे लोग, तो उसमें जो एलर्जन के कॉन्टैक्ट में नहीं आते थे उससे कंट्रोल हो जाता था अस्थमा को। जो आपने जो आपका क्वेश्चन है जो आपने ये पूछा कि अस्थमा का परमानेंट इलाज, जितना पेशेंट टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाएगा, ट्रीटमेंट को फॉलो करेगा और जैसा बताया वैसा जिन चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला जाएगा उसको फॉलो करेगा, तो इसको हम बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। और हो सकता है कि एक बार ट्रीटमेंट लेने से 4-5 साल आपको कोई अस्थमा के सिम्टम ही ना आए, पर जे आप इसको लाइटली लेंगे तो ये अस्थमा जो है आने वाले समय में COPD भी बन सकता है। जे पेशेंट जो है अस्थमा की ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना ले, कंप्लायंस उसका ठीक ढंग से जितनी बार बोला जाए उतनी बार ना ले, या उसकी टेक्निक खराब हो तो ये, और वो साथ के साथ स्मोकिंग भी कर रहा हो, तो ऐसा पेशेंट जो है आने वाले टाइम में COPD में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अस्थमा जब आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो इसका इलाज है और पेशेंट काफी हद तक ठीक रहता है।
1: जिस चीज से एलर्जी होती है उसकी पहचान रखनी पड़ेगी, जैसे कि पोलन है, मौसम में बदलाव है, धुएं से है, प्रदूषण से है, तो इन चीजों से थोड़ा उनको बचाव रखना पड़ेगा ताकि अस्थमा का अटैक कम पड़े।
0: जी मैम,
1: डॉक्टर संजीव, इनहेलर के उपयोग को लेकर भी लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: जहाँ तक इन्हेलर की बात है, इन्हेलर का वैसे कोई जो लोगों में होता है कि ये आदत पड़ जाएगी या ऐसा है, अस्थमा के केस में मैं बोलना चाहूँगा अस्थमा ऐसी डिजीज है जिसमें जो है आप जो ट्रीटमेंट प्रॉपर करते हैं, जब मोस्ट ऑफ द टाइम हमने क्या देखा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे पास अस्थमा के सिम्टम लेके आता है और कन्फर्म अस्थमा डायग्नोसिस हो जाता है, तो हम उसके टेस्ट करते हैं, टेस्ट पे जो PFT में कन्फर्म अस्थमा डायग्नोज हो जाता है तो हम इन्हेलर देते हैं। इन्हेलर को हम उसकी टेक्निक को प्रॉपरली सिखाते हैं और उसके बाद जो है जो हम कुछ उसमें जो दवाई होती है माइक्रोग्राम में होती है और उसमें जो है उसके साथ उसको हम कुरला करने के लिए बोलते हैं ताकि उसके गले में जो है दवाई ना रुके और उसको कोई जैसे कि बोलने में दिक्कत या उसके गले में इन्फेक्शन ना हो, तो वो सारी चीज़ें समझा के प्रॉपर ढंग से बताते हैं। जहाँ तक ये है कि इसकी आदत की है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अस्थमा में हमने जब हम पेशेंट को इनिशियल जो है 3 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट पर डालते हैं और जब ट्रीटमेंट पर पेशेंट को डाला होता है तो साथ के साथ उसको महीने के महीने बुला के उसका लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जो पहले जो उसके लंग की कंडीशन थी, जो उसका फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम था या फोर्स वाइटल कैपेसिटी है, उन चीज़ों में इंप्रूवमेंट आ रही है और उसका जो हम टेस्ट करते हैं जिसको हम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट है और धीरे धीरे जो उसके लक्षण कम हो रहे हैं, तो हम उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम टोटली जो है दवाइयाँ बंद भी कर देते हैं। कहने का मतलब यही होता है कि जो दवाइयाँ हैं उनको डॉक्टर की सलाह से ली जाती है और जैसे डॉक्टर ने प्रॉपर बोला होता है हर बात को समझना होता है।
1: डॉक्टर संजीव प्रभाकर, जैसे कि आज हम दमा यानी अस्थमा की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी आपने हमें बताया कि टाइप्स क्या रहते हैं, किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं, ये सारी बातें हमें बताई, तो हमें ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, उपचार क्या रहता है?
0: ट्रीटमेंट जो है हमारा जो है इनहेल्ड फॉर्म में होता है। जो अस्थमा की ट्रीटमेंट आती है उसको उसका मीटर डोज इनहेलर भी होते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर भी होते हैं, तो उनको लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है। उसमें हम जो इनहेलर लेने की टेक्निक जो है अपने सामने पेशेंट को सिखाते हैं और जितनी बार पेशेंट फॉलोअप पे आता है तो हर बार उसको टेक्निक समझाई जाती है कि टेक्निक से लेनी होती है। तो और जहाँ तक दवाई का सवाल है, दवाई डिपेंड करती है कि पेशेंट में सिम्टम कितने हैं। पेशेंट में जो इनफ्रीक्वेंट अस्थमा सिम्टम है, जैसे less than 2 times उसको पर वीक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम लो डोज ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स देते हैं। साथ में जो ये पेशेंट को ये सिम्टम 3 से 4 बार आ रहे हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा डोज को बढ़ाना पड़ता है, तो मीडियम डोज देते हैं। और जो पेशेंट जो है मोस्ट ऑफ द डे ट्रीटमेंट लेके आ रहा है तो उसको हम पहले ट्रीटमेंट जो है थोड़ा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट भी देते हैं और जो डोज है उसको भी थोड़ा बढ़ाते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट के साथ साथ इसमें जो आजकल हमारा इसमें बचाव की तरफ भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मैंने शुरू में इसके टाइप्स बताए थे, तो ओबेसिटी ऑनसेट अस्थमा है तो ऐसे पेशेंट में हम वेट रिडक्शन के लिए बोलते हैं। जो अस्थमा विद परसिस्टेंट एफ्रो है जिसमें कि COPD होने का खतरा भी बना रहता है, तो हम उस पेशेंट में ऐसे बोलते हैं कि आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है और धुएं के किसी भी तरह के धुएं के कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है। या फिर आप जो एलर्जिक अस्थमा होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि वैसे तो ये एलर्जन को अवॉइड करना मुश्किल होता है, पर हमारी यही सुझाव रहता है मरीज को कि वह एलर्जन से दूर है। जैसे कहीं कोई पंजेंट स्मेल है, कोई केमिकल्स है, कोई कोई पेंट हुआ है या कहीं घरों में जैसे होम डस्ट माइट्स है, तो हमें यह सुझाव देते हैं कि प्रॉपरली मैट जो आपके कारपेट्स है वो कम बिछाएं या बिछाने भी पड़े तो उनको धूप में सुखाएं, और फिर आपने जो पैड्स रखे हैं तो पैड्स को अपने साथ मत सुलाएं। तो इस तरह से हम सुझाव देते हैं ताकि इस अस्थमा से बचाव हो। इसके अलावा जो हमारे पास और बचाव होता है कि अस्थमा के पेशेंट में हम वैक्सीनेशन भी करते हैं। जो वैक्सीनेशन में जो है हमारा जो है आता है, जैसे COVID-19 की वैक्सीन की जाती है साल में, फिर उसके हिसाब से इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की जाती है, और साथ के साथ जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन जो एक ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करते हैं, वायरल इन्फेक्शन से भी जो है अस्थमा का अटैक बढ़ने का शंका

0: बनी रहती है। तो ऐसे में जो वायरल इन्फेक्शन है जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस RSV वायरस, उसकी वैक्सीन भी लगाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और मास्क लगाने के लिए बोलते हैं जब पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बचाव में भी करते हैं।
1: डॉक्टर संजीव, तो अस्थमा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से?
0: अस्थमा का यही है कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि टाइम से जो है इसके सिम्टम को समझ लेना चाहिए, और टाइम से जो है डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। और जैसे डॉक्टर आपको दवाइयों के बारे में बताते हैं, जो टेक्निक, जो मुख्य तौर पर टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो इस दवाई को लेने की टेक्निक होती है उसको सीखना होता है। और जैसे डॉक्टर ने दवाई के बाद कुल्ला करने के लिए बोला होता है वैसे करना होता है, और प्रॉपर जो है टाइम टू टाइम जाके फॉलोअप करवाना होता है। ये अस्थमा में ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, जे आप अस्थमा में इलाज जो है प्रॉपर कराएंगे, और जो जो मुख्य बातें डॉक्टर आपको बोलते हैं कि इस तरह से एलर्जन से बचना है, टाइम से आना है, तो उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अस्थमा से पूरा बचाव हो सकता है।
1: डॉक्टर संजीव प्रभाकर, आज हमने अस्थमा से संबंधित आपसे जाना, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला चुन किया है आपने। लीजिए, सुबह के 9 बज चुके हैं और ये समय है फिल्म संकेत का। देखिए श्रोताओं, संगीत वो जादू है जो बिना शब्दों के ही दिल के हर बात कह देता है, और अगर इन शब्दों के साथ खूबसूरत संगीत का मिलन हो, खूबसूरत संगीत के साथ उनमें खूबसूरत शब्द हों, तो सुर और शब्द दोनों ही मिलकर खूबसूरत गीत को बेहतरीन गीत बना देते हैं। और ऐसे ही गीत हमारे प्रोग्राम फिल्म संगीत की है खासियत। तो चलिए, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाते आपको और आगाज़ करते हैं इस गाने के साथ।

वेल लिसनर्स, इस वक्त ट्यून इन है आप FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर, और रोज़ाना हमारी कोशिश रहती है कि हर प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके दिन को खुशनुमा बनाएं, एक से बढ़कर एक संगीत के नगमे सुनवाएं और बहुत सारी ढेर सारी बातें आपके साथ करें। तो चलिए, ढेर सारी बातें तो है हमारे पास, लेकिन आपको जो बेसब्री से इंतज़ार रहता है गीत संगीत का, लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा एंजॉय कीजिए।

0: तो देखिए जी, अगर ज़िंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशियों को बांटना शुरू कर दीजिए। देखिए फिर वो कैसी खुशियाँ दुगनी होकर आपके पास वापस लौट आती है। हमेशा दूसरों को खुशी दीजिए, क्योंकि दूसरों को खुश रखने पर ईश्वर आपको खुशी अपने आप दे देगा। तो जी, इसी के साथ आप संगीत भी सुनिए जो FM शिमला पर रोज़ाना हम आपको सुनवाते हैं, बेहतरीन संगीत सुनवाते हैं, ताकि आप भी खुश रह सकें हमारे साथ। इसलिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक और नगमा कर रहा है आप सभी का इंतजार फिल्म संगीत में।
1: ओ देखो, हो गया फेर, खेल हो गया शुरू, देखो कि मैं जा रहे ने उस लैंड वाले।

देखिए जी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जो दुनिया में हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलती है। इसलिए ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए, चाहे इंद्रधनुष जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी के रंग भी होने चाहिए। खूबसूरती के साथ अपने ज़िंदगी को जिए, घूमिए फिरिए, संगीत सुनिए और अपने ज़िंदगी के मकसद को पूरा कीजिए। बहरहाल अभी के लिए फ़िल्म संगीत में इतना ही।

एफएम शिमला ट्यून किया है आपने। लीजिए, 9:15 हो चुके हैं। चलिए अब उन कार्यक्रमों के बारे में आपको बताते हैं जिन्हें आप आज एंजॉय करेंगे प्राइमरी चैनल पर। 9:31 पर, यानी अब से कुछ ही देर बाद सुरवेला कार्यक्रम आप सुनेंगे प्राइमरी चैनल पर। दिन में 10:00 रिमझिम कार्यक्रम होगा। 11:15 पर लोक संगीत सुनेगा। दिन में 12:00 फिल्म संगीत और 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनिएगा।

दिन में 1:10 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनिएगा और सुनहरी किरणें कार्यक्रमों का समय दिन में 2 रहेगा। 2:30 पर हिमगुंजन कार्यक्रम होगा और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 पर। हिमाचली बोलियों के अंतर्गत आज शाम 4:20 पर सबसे पहले आप आनंद लेंगे चंबियाली कार्यक्रम का। 4:50 पर मंडियाली कार्यक्रम होगा और 5:20 पर पंगवाली कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। लोकगीत 5:50 पर सुनेगा और कांगड़ी कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:06 पर। इसी के साथ लाहौली कार्यक्रम का समय 6:35 पर होगा। रोजगार समाचार शाम 7:56 पर प्राइमरी चैनल पर ही सुनिएगा और प्राइमरी चैनल पर रात्रि 8 धारा रे गीत का समय होगा। 8:15 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। गुलदस्ता जिसमें गजलें सुनते हैं आप सुनिएगा 9:15 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 10 और 10:30 पर सुरबहार कार्यक्रम सुनिएगा। तो ये हैं वो तमाम प्रोग्राम जिन्हें आज आप हमारे प्राइमरी चैनल पर सुन सकेंगे। आकाशवाणी FM शिमला जर्न किया है आपने। 9:18 होने वाले हैं प्रातः के। कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: किया जाएगा। हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR व DTH पर भी उपलब्ध है।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें। अधिक

0: जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। नीति आयोग की बैठक नई दिल्ली में आज। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल लेंगे भाग। प्रदेश सरकार ने 73 सरकारी स्कूलों को किया मर्ज, 20 किए बंद और 3 कॉलेजों के विलय का फैसला लिया वापस। कांगड़ा जिला के ढगवार में एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया जा रहा निर्माण। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें आधारभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से जुड़े 4 प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व घाटा अनुदान राशि के बंद होने से राज्यों को हुए आर्थिक नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं की भरपाई और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की

0: मांग से जुड़े मुद्दे उठाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान से सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 छात्रों वाले 73 स्कूल मर्ज एवं शून्य नामांकन वाले 20 स्कूल और बंद कर दिए हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि स्कूलों के युक्तिकरण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। इस बीच सरकार ने 3 सरकारी कॉलेजों को विलय करने के आदेश वापस ले लिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें डिग्री कॉलेज कुकुमसेरी, डिग्री कॉलेज रोहनाट और डिग्री कॉलेज जयनगर के विलय के देश वापस लिए गए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की राशि से एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत डेयरी सेक्टर को नई मजबूती सहित हजारों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: कांगड़ा जिले के ढगवार में 225 करोड़ से अधिक की राशि से एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल डेयरी सेक्टर को नई मजबूती देगा बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद स्थानीय स्तर पर दूध की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे जहां किसानों और पशुपालकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं उन्हें बाजार तक पहुंच के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी को एक संगठित उद्योग का रूप से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह की आधुनिक परियोजनाएं किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने में मददगार साबित होंगी। ढगवार का यह मिल्क प्लांट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ग्रामीण समृद्धि की नई उम्मीद बनकर उभर रहा है, जो आने वाले समय में कांगड़ा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में विधायकों के वोट डालने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश अतुल एस चांदुरकर के खंडपीठ के समक्ष मामला 15 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जून को प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत स्थानीय विधायकों नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में बराबर पार्षद होने पर वोट डालने का अधिकार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस संध्या में सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरनाम भुलर मुख्य कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न मशहूर कलाकार सांस्कृतिक संध्या का समा बांधेंगे। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ लोगों और पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि सिरमौर जिला के नाहन में बारिश होने का समाचार है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 16 जून तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। विभाग ने आज 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, व्यावसायिक वाहनों का बढ़े

का परमिट शुल्क हर 2 साल में होगी 10% बढ़ोतरी। हिमाचल परिवहन विभाग ने मोटर वाहन नियम संशोधन का ड्राफ्ट किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, ई टैक्सी और ई रिक्शा के लिए मिलेंगे 50 करोड़। हिमाचल में अब 24 घंटे खुल सकेगी दुकानें। दैनिक जागरण का शीर्षक है, प्रमाण पत्र व लाइसेंस सहित सभी सेवाएं करें ऑनलाइन। दैनिक भास्कर की खबर है, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे प्रदेश हित से जुड़े मुद्दे। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, प्रदेश में आज से बिगड़ेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। नीति आयोग की बैठक नई दिल्ली में आज, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल लेंगे भाग। प्रदेश सरकार ने 73 सरकारी स्कूलों को किया मर्ज, 20 किए बंद और 3 कॉलेजों के विलय का फैसला लिया वापस।

0: कहा, वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। नीति आयोग की बैठक नई दिल्ली में आज, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल लेंगे भाग। प्रदेश सरकार ने 73 सरकारी स्कूलों को किया मर्ज, 20 किए बंद और 3 कॉलेजों के विलय का फैसला लिया वापस। कांगड़ा जिला के ढगवार में एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया जा रहा निर्माण। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: इस समय आपने ट्यून किया है 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

तो देखिए जी, प्रकृति का हर रंग एक नई कहानी कहता है, हर मौसम एक नया संदेश देता है। तो कार्यक्रम का आगाज़ मौसम के हाल के साथ ही करते हैं। तो आज जो है हमारे शिमला का मौसम बहुत ही सुहावना रहने वाला है। बादलों का आगाज़ भी होगा, लेकिन दोपहर के बाद कुछ ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना भी है, इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहिए। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम की शुरुआत हम गीत संगीत के साथ ही करने वाले हैं। तो एंजॉय कीजिए प्रोग्राम का पहला नगमा, फिर ढेर सारी बातें होंगी आप सभी के साथ।

तुझे बिल्कुल एक हसीन वादी आग को भी भुला रही है, जिसके बारे में आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो चलिए कुदरत के रंग प्रोग्राम को आगे की ओर ले चलते हैं और बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही आकर्षक ज़िले के बारे में आज आपके साथ बात करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सौंदर्यपूर्ण और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर ऐतिहासिक विरासत का खजाना बिलासपुर ज़िला की, जी हाँ, जो गोविंद सागर के लिए विशेष पहचान रखता है। गोविंद सागर की बात हो रही है, गोविंद सागर के बारे में भी बात करेंगे। बिलासपुर ज़िले में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और गीत संगीत से तो आपका मनोरंजन करवाएंगे ही। तो चलिए, अभी एक और गीत आप सभी का इंतज़ार कर रहा है, एंजॉय करते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

तो चलिए जी, कुदरत के रंग प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला पर, और आज हम बहुत ही और बेहतरीन पर्यटक स्थल की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बिलासपुर ज़िले की, जो गोविंद सागर के लिए, गोविंद सागर झील के लिए सबसे ज़्यादा पहचान रखता है। ये सतलुज नदी पर बनी है और इसका मनमोहक जो दृश्य है, विशाल गोविंद सागर झील का, ये देखते ही बनता है। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर ही इस जिले की खास पहचान है और इस ज़िले को जो प्रमुख बनाती है वो है गोविंद सागर झील ही। गोविंद सागर झील में अगर आप घूमना चाहते हैं या आना चाहते हैं बिलासपुर ज़िले में, तो ये गोविंद सागर झील आप घूम सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। ये जो है गोविंद सागर झील, मनुष्य निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके अलावा जो है आप यहाँ नैना देवी मंदिर में घूम सकते हैं। ये भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जहाँ पर आप श्रद्धा से पूजा अर्चना के साथ साथ गोविंद सागर झील के नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कौल डैम है, जो सतलुज नदी पर ही बना हुआ एक बहुत बड़ा बांध है। इसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही आकर्षित आपको करता है और ये जो डैम है घूमने के लिए बेहद ही खूबसूरत जगह है। आप आ सकते हैं और इस स्थान पर भी घूम सकते हैं। गोविंद सागर झील की बात होगी, नैना देवी मंदिर की बात होगी, कौल डैम की बात होगी, और भी है बिलासपुर में बहुत सारी जगहें जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है और भावनात्मक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है। आप घूम सकते हैं। बात करेंगे प्रोग्राम में आगे, लेकिन अभी एक और गाना कर रहा है आप सभी का इंतज़ार।

तो जी कुदरत के रंग प्रोग्राम सुन रहे हैं आप FM शिमला पर, और कुदरत के रंग की बात हो रही है तो पहाड़ी राज्यों से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जल झरने नदियाँ और कहकहलाते पेड़, हरियाली चारों तरफ। कभी यहाँ बर्फ़ पड़ती है, कभी बारिश की रिमझिम फुहारें होती हैं, तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा होता है पूरे पहाड़ों का। आप सर्दी में आइए, आप गर्मी में आइए, कोई भी मौसम है घूमने के लिए आपके पास सुटेबल, तो आप यहाँ के नज़ारों से मंत्रमुग्ध हुए बिना रह नहीं सकते। लेकिन आज तो हम अगर बिलासपुर ज़िले की बात कर रहे हैं, तो चलिए और बात कर लेते हैं कि बिलासपुर ज़िले में आप और कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर घूम सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टि से भी ठीक है यहाँ पर आने के लिए आपके लिए। आप स्टडी भी कर सकते हैं, यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं, मंदिर हैं, फोर्ट हैं, और यहाँ पर डैम हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, आप आ सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं उनके लिए। तो हमने बात की गोविंद सागर झील की, नैना देवी मंदिर की, कॉल डैम की, अब बात करते हैं बहादुरपुर फोर्ट की, जहाँ जिले की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक पर बना है ये किला, जो आकर्षक के साथ साथ ऐतिहासिक भी है। बहादुरपुर किला है इसका नाम, और इसके साथ साथ आप व्यास केव में भी आ सकते हैं घूमने के लिए। मान्यता ये है कि महर्षि वेद व्यास ने यहाँ तपस्या की थी। ये स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर महर्षि व्यास की बात की जाए तो उन्हीं के नाम पर जो है बिलासपुर ज़िले का नाम भी पड़ा। रुक्मणी कुंड भी है यहाँ पर घूमने की जगह, ये एक ऐतिहासिक दृष्टि लायक घूमने लायक स्थान है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो जी आप भी अगर बिलासपुर ज़िले में घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बस के द्वारा आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से पहुँच सकते हैं। ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत शहर के साथ, यहाँ के लोगों के साथ की और पुराने घरों की बुनावट, पशुपालन का अंदाज भी खास है। यहाँ का भाईचारा जो है देखते ही बनता है। और खाने की बात की जाए तो बिलासपुरी धाम यहाँ की खासियत है, जिसमें मदरा बनता है, खट्टा बनता है, मीठा बनता है, कद्दू की सब्ज़ी बनती है, और बहुत सारी सब्ज़ियाँ होती है जो बिलासपुरी धाम को खास बनाती है। तो आप भी आइए, घूमिए फिरिए, आनंद लीजिए, और धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं, ऐतिहासिक स्थानों पर आप जा सकते हैं, और जो है आप अपनी जो है घूमने फिरने की जो आपकी प्रवृत्ति है, इसके अगर आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए आप अलग ही अनुभूति का आप अनुभव करेंगे जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आइए घूमिए फिरिए, और इसी के साथ संगीत भी सुनते रहिए जो हम हमेशा 103.7 MHz पर आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा भी इंजॉय करते हैं।

0: तुझे कुदरत के रंग प्रोग्राम आप सुन रहे थे FM शिमला पर। आज बात की हमने बिलासपुर ज़िले की, जो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो प्रकृति का हर रंग हमें जीवन को में प्रेम को बिखेर देता है, हमारे जीवन के संतुलन और सुंदरता को बनाए रखता है, साथ ही जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। तो इसी संदेश के साथ आज कुदरत के रंग प्रोग्राम में इतना ही। वन जीरो 3.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। 9:57 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से जुड़े 4 प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री राजस्व घाटा अनुदान राशि के बंद होने से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं की भरपाई और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग से जुड़े मुद्दे उठाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान व सत्ता संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा है कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की 4थी सांस्कृतिक संध्या में आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस संध्या में सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर मुख्य कलाकार के

में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न मशहूर कलाकार सांस्कृतिक संध्या में समा बांधेंगे। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ लोगों और पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे। इस अंक में इतना ही, नमस्कार। आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने, तो चलिए अब आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। रात्रि 9:30 पर आप दिल की आवाज़ भी कार्यक्रम सुनेंगे, जो आपकी ईमेल पर आधारित रहेगा। तो आप हमें 9:30 के मध्य से लेकर 10 तक आप हमें इस बीच ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है AIR@shimlamusicmail.com। जी हाँ, आपके नाम हम ज़रूर कार्यक्रम में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद के गाने भी चलाएं। तो बहरहाल अब 10 बज चुके हैं, ये समय है जी सदाबहार गीत प्रोग्राम का।

तो लीजिए, मैं रीटा पामा हाजिर हूँ सदाबहार गीत प्रोग्राम लेकर। देखिए, सदाबहार गीत प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर, सदाबहार वो गीत हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, वक्त के साथ पुराने नहीं बल्कि और भी खास हो जाते हैं। हर गीत अपने साथ एक नई कहानी लाता है, कभी मुस्कान तो कभी हल्की सी उदासी भी लेकर आता है। संगीत की ये महफिल जहाँ हर धुन दिल के किसी कोने में छू जाती है। वो दौर कुछ ऐसा था जब गीत सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि दिल से महसूस किए जाते थे। हर सुर में छुपी होती थी यादों की खुशबू। तो चलिए जी, इन्हीं यादों से रूबरू करवाते हैं आपको सदाबहार गीत प्रोग्राम में। सदाबहार गीत प्रोग्राम जो हमारे प्रोग्राम को खास बनाता है, हमारे FM शिमला को खास बनाता है, जिसका इंतज़ार आपको बेसब्री से रहता है। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते आपको, चलिए आगाज़ करते हैं अलका याग्निक और मनहर उदास के गाए इस गीत के साथ।

नायक फिल्म का है ये गाना, आवाज़ अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ की है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है ये गाना, पिक्चराइज हुआ था माधुरी दीक्षित पर।

0: देखिए, कभी रेडियो की धीमी आवाज़ और ये मधुर नगमे बस यही है पुराने दिनों की यादें। इन गीतों के साथ जैसे ज़िंदगी के कई खूबसूरत पल फिर से जी उठते हैं। ये सदाबहार गीत दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। हर धुन में बसी है एक मासूमियत जो आज भी दिल को सुकून देती है। ऐसे ही नगमे हमारे प्रोग्राम की है खासियत। तो चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा चांदनी फिल्म से सुनवाते हैं आपको, चौली मुखर श्रीदेवी की आवाज़ में।
1: चांदनी

Italia.

तो चलिए जी, संगीत की मधुर धुनों के साथ थोड़ा सा मौसम का हाल भी जान लेते हैं। मौसम का मिजाज वैसे तो पिछले कुछ दिनों से जो है बहुत गर्म बना हुआ है, पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम थोड़ी सी करवट ले सकता है। शायद बारिश की झमझम भी आपको देखने को मिल सके, जिससे गर्मी से थोड़ी सी राहत तो आपको ज़रूर मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह राहत अभी मिलने वाली नहीं है। तो देखिए, मौसम विभाग कह रहा है कि थोड़े से बादल आ सकते हैं दोपहर के बाद, और आपको मौसम जो है करवट बदल सकता है, थोड़ा सा ठंड का एहसास भी हो सकता है। इसी के साथ साथ देखिए, गर्मियां हैं, समर फेस्टिवल का जो है सीज़न शुरू हो चुका है, समर फेस्टिवल चल रहा है हिमाचल में, और लोग गर्मियों से राहत पाने के लिए बाहरी राज्यों से, हमारे जो साथ लगते राज्य हैं वहाँ से शिमला घूमने आते हैं, तो ऐसे में जो है जाम का लगना लाजमी है। तो आप जब भी घर से निकलते हैं, घर से थोड़ा सा पहले निकलने की कोशिश करें, और जो है अपने साथ जो है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, कम से कम अपने व्हीकल का यूज़ करें, जिससे हमारा फ्यूल की भी बचत हो, हमारे टाइम की भी बचत हो, और हम जो है अपने प्रशासन के लिए थोड़ा सा सहयोग दे सकें। तो जब भी आप घर से निकलते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और घर से थोड़ा सा समय से पहले निकलें, ताकि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या कहीं पर भी अपने ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आप टाइम से वहाँ पर पहुँच सकें और जो है अपने काम को आप ख़त्म कर सकें, साथ के साथ आप इंजॉय भी कर सकें। गाड़ी में चलते हैं तो

सुनते रहिए एफएम शिमला, घर पर रहते हैं तब भी सुनते रहिए एफएम शिमला, कोई काम कर रहे हैं तब भी सुनते रहिए एफएम शिमला, क्योंकि एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे इस प्रोग्राम में रोज़ाना हम सुनवाते हैं आपको।

0: सदाबहार गीत प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप एफएम शिमला पर। कार्यक्रम जारी रहेगा इस संदेश के बाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

प्रेम ग्रंथ फिल्म का गाना विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ थी इस गाने में, और ये प्रेम ग्रंथ फिल्म से था। ऋषि कपूर माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज था ये गाना। तो देखिए जी,

प्रेम ग्रंथ फिल्म का गाना विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ थी इस गाने में, और ये प्रेम ग्रंथ फिल्म से था। ऋषि कपूर माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज था ये गाना। तो देखिए जी, हर गीत अपने साथ एक कहानी जो है वो बयां करता है, कभी प्यार की तो कभी जुदाई की और खूबसूरत यादों के। इन नगमों में वो एहसास छिपे हैं जो आज भी दिल को सुकून दे जाते हैं, और जब भी मोहब्बत का जिक्र होता है तो ये सदाबहार नगमे खुद ब खुद होठों पर आ जाते हैं।

देखिए, हमारी ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत कीमती हैं, एक समय और एक रिश्ते। तो हमेशा समय की कदर कीजिए और रिश्तों को बचा कर रखिए। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो यकीन मानिए कि आप दुनिया के सबसे दौलतमंद व्यक्ति हैं। और अगर ये दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो सब कुछ होते हुए भी आप कुछ भी नहीं हैं। तो ये दोनों चीज़ें यानी आपकी जो आपके रिश्ते हैं आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ, उन्हें संभाल कर रखिए और समय की कदर कीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। तो आप सुन रहे हैं इस वक्त FM शिमला और सदाबहार गीत प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। चलिए कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास, सुखविंदर सिंह की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको सौदागर फिल्म का ये गाना।

0: सदाबहार गीत एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला पर। तो देखिए जी, अब शिमला में ही गर्मियों का तकरीबन तकरीबन आगाज़ है, हो चुका है। तो ऐसे में गर्मियों में अपने जो आप हैं, गर्मियों में पानी का बचाव करें, पानी की बहुत किल्लत रहती है, तो पानी का बचाव करें। अपनी टंकियों को ओवरफ्लो बिल्कुल ना होने दें, ज़रूरत जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करें ताकि पानी बचे और जीवन बचे। बहरहाल आप इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं सदाबहार गीत प्रोग्राम, कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनवाएंगे इस संदेश के बाद।
1: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान

0: में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

प्यार का देवता फिल्म का ये गाना जो पिक्चराइज हुआ था मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित पर, अलका याग्निक मोहम्मद अजीज की आवाज़ थी इस गाने में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। तो चलिए जी, इसी नगमे के साथ सदाबहार गीत प्रोग्राम को यहीं पर देने वाली हूँ मैं विराम। अब मैं रीटा पामा भी आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि मनोरंजन गीत संगीत अभी जारी है FM शिमला पर। बस आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए FM शिमला के साथ।

0: 93.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला ट्यून किया है आपने, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी आप ये सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश से जुड़े 4 प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व घाटा अनुदान राशि के बंद होने से राज्यों को हुए आर्थिक नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं की भरपाई और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग से जुड़े मुद्दे उठाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान से सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के वर्गों को संबोधित करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 छात्रों वाले 73 स्कूल मर्ज और 0 नामांकन वाले 20 स्कूल और बंद कर दिए हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि स्कूलों के युक्तिकरण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं व संस्थान उपलब्ध करवाए जा सके। इस बीच सरकार ने 3 सरकारी कॉलेजों को विलय करने के आदेश वापस ले लिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें डिग्री कॉलेज कुकुमसेरी, डिग्री कॉलेज रोहनाट और डिग्री कॉलेज जयनगर के विलय के आदेश वापस लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के चुनाव में विधायकों के वोट डालने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश अतुल एस चांदुरकर की खंडपीठ के समक्ष ये मामला 15 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जून को प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके तहत स्थानीय को नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में बराबर पार्षद होने पर वोट डालने का अधिकार दिया था।

0: राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस संध्या में सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर मुख्य कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न मशहूर कलाकार सांस्कृतिक संध्या में सामा बांधेंगे। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ लोगों और पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुने जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप ट्यून इन है 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

0: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। जी हाँ दोस्तों, वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको पुराने गीत और साथ ही करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातें भी। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका शर्मा। तो आइए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। फिल्म जॉनी मेरा नाम से किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत पुरानी फिल्मों से। अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज़ों में। गीतकार थे इंदिवर और राजेंद्र कृष्ण। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। ट्यून इन है आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगी। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें। फिलहाल हम आप सभी को खुश करते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी

0: सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, एफएम शिमला पर सुन रहे हैं आप पुराने गीत और साथ ही कर रहे हैं हम आपके साथ ढेर सारी बातें भी। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में लोगों की कद्र करना सीख लीजिए, ना ज़िंदगी वापस आती है और ना ही ज़िंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं बल्कि हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है, इसीलिए जब तक जीवन है एक दूसरे का हाल पूछते रहिए और एक दूसरे को खुशियाँ बांटते रहिए। फिलहाल आप सभी को हम खुश करते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म शर्मिली से किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं नीरज और संगीत दिया है SD बर्मन ने। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम गीत पुरानी फिल्मों से मैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म हिमालय की गोद से मुकेश की आवाज़ में सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कार्यक्रम गीत पुरानी फिल्मों से मैं आज बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ। FM शिमला पर वक्त है कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। जी हाँ, कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाएंगे लोक गीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कांगड़ी लोक गीत के साथ। प्यार चंद की आवाज़ में आप सभी के लिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

FM शिमला पर आनंद ले रहे हैं आप कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। कार्यक्रम का अगला लोकगीत चंबियाली लोकगीत राज प्रभाकर की आवाज़ में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ट्यून इन है आप आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। कार्यक्रम का अगला लोकगीत मंडियाली लोकगीत प्रभा देवी की आवाज़ में आप सभी के लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

एफएम शिमला पर आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में आज बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली स्टूडियो से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।

0: में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। ट्यून इन है आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: लीजिए, हाजिर हैं हम आज का कार्यक्रम महिला सम्मेलन लेकर। कार्यक्रम के आज के अंक में आपके साथ हैं आपकी रेडियो हमसफर सुनीता
1: और हम हैं दयावती। आप सभी को हमारा नमस्कार।
0: बहनों, जीवन में परिवर्तन उतना ही स्वाभाविक है जितना सुबह के बाद शाम का आना, और जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार करते हैं वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं।
1: जी सुनीता, बात अगर समय की करें तो समय बहुत बलवान है। समय के साथ चला जा सकता है बहनों, समय से आगे भी चला जा सकता है, लेकिन समय को रोक पाना नामुमकिन है।
0: जी बिल्कुल दयावती, और समय के साथ सभी कुछ बदल भी जाता है क्योंकि समय कभी ठहरता नहीं, ये परिवर्तनशील है, और समय के साथ होने वाले बदलाव या परिवर्तन ज़रूरी भी होते हैं।
1: बिल्कुल ज़रूरी होते हैं क्योंकि आज का युग तेज़ी से बदल रहा है। नई तकनीक, नई सोच, नई जीवन शैली हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं।
0: जी,
1: तो ऐसे में महिलाओं के लिए भी बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकनीक के साथ साथ परिवार, समाज, शिक्षा और रोज़गार, हर क्षेत्र में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, और पहले जहां महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित रहती थी, वहीं आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, व्यवसाय और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में जो है अपनी अलग पहचान बना रही है ना। और ये जो बदलाव है ये तभी संभव हुआ है जब महिलाओं ने समय के साथ खुद को विकसित किया है।
1: जी हाँ, वहीं परिवर्तन प्रकृति का नियम है बहनों, जो समय के साथ बदलना सीख लेता है वहीं जीवन में जो है वो आगे बढ़ता है। तो आइए आज की चर्चा में बात करते हैं बदलते समय के साथ तालमेल कैसे बिठाएं, और साथ ही नई चुनौतियों को अवसर में कैसे बदलें, और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर कैसे आगे बढ़ें।
0: जी बिल्कुल दया, सबसे पहले बहनों से बात करते हैं सीखने की। देखिए बहनों, समय की जो धारा है वो कभी रुकती नहीं, वो हर पल कुछ नया लेकर आती है। टेक्नोलॉजी भी डे बाय डे एडवांस होती जा रही है, और ऐसे में हमें भी खुद को डे बाय डे अपडेट होना होगा।
1: जी,
0: इसलिए नई जानकारी और नए कौशल सीखना कभी ना छोड़ें, और ये हमें आत्मविश्वासी बनाते हैं। और चाहे मोबाइल चलाना हो या ऑनलाइन लेन देन करना हो या किसी नए हुनर को सीखना, क्यों है ना, और हर नई जो सीख है दया वो हमें हमेशा आगे ही बढ़ाती है।
1: बिल्कुल सुनीता, क्योंकि आज के डिजिटल युग में जो है ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन और सरकारी सुविधाओं की जानकारी का लाभ उठाना भी सीखे बहनों, ख़ासतौर पर वो महिलाएं जो कामकाजी यानी कि वर्किंग नहीं है, वो अक्सर ये सोचकर कि हमें कहाँ इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, वो एडवांस टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं सुनीता।
0: जी बिल्कुल सही कहा दया आपने, और ऐसी काफ़ी महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसमें इंटरेस्ट भी कम लेती हैं और सीखना भी कम चाहती हैं। लेकिन बहनों, आप चाहे वर्किंग वुमेन हो या होममेकर, नई चीज़ें सीखकर आप खुद को आत्मनिर्भर करती हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप अपना काम खुद कर सकती हैं। आजकल देखिए ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो हर चीज़ें घर बैठे मोबाइल से आसान भी हो गई हैं, और मुश्किल भी कहें जिन्हें चलाना नहीं आता मोबाइल, या जो नहीं कंप्यूटर चलाना जिन्हें आता, तो उनके लिए टफ भी है, लेकिन इन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। और बात अब हम जब बदलाव को स्वीकार करने की करें ना, तो बदलाव को हमेशा अवसर के रूप में ही देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमें हमारे काम आए या नहीं, हमें नहीं आ रहा है या हम सीखने में टाइम लगेगा। हमेशा जो बदलाव होता है उसे आप एक अवसर की तरह लें, और कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका जो है ये बदलाव लेकर आता है।
1: इसलिए बहनों,
0: हर बदलाव को हमेशा खुले मन से स्वीकार करें।
1: जी, यानी कि घबराने और डरने के बजाय आप ये सोचिए कि इस बदलाव से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं बहनों, और कौन कौन से नए अनुभव आपको आने वाले समय में लाभ देंगे। बहनों, मन में आने वाले जो नकारात्मक विचार अक्सर रास्ते को कठिन बना देते हैं, और ऐसे में खुद से ये ज़रूरी कहें कि मैं नई परिस्थितियों में खुद को ढाल सकती हूँ।
0: जी बिल्कुल दया, और नए तरीके और नई जिम्मेदारियाँ शुरू में मुश्किल ज़रूर लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे नई आदतों और परिस्थितियों को अगर आप अपनाती हैं तो आप भी उसमें कुशल बन जाती हैं, और साथ ही अपने जीवन के उस समय को भी बहनों

मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: याद करें जब पहले भी आपने ना जाने कितने ही बदलावों का सामना किया होगा और वही अनुभव आपको आने वाले नए बदलाव को अपनाने की ताकत भी देगा, क्यों, है ना?
1: जी सुनीता, क्योंकि अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से बातचीत आप जो हैं ज़रूर करें, उनके अनुभव और सुझाव आपको नई ऊर्जा देंगी बहनों, साथ ही बदलती परिस्थितियों को समझने में भी आपको काफ़ी मदद करेंगी ये।
0: जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि दूसरों से बातचीत करना भी ज़रूरी है, आप किसी चीज़ को सीखने में या कोई बदलाव अपनाने में आपको समय लग रहा है तो आप दूसरों से जो है अनुभव ले सकती हैं और फिर उस रास्ते पर जो है आगे बढ़ सकती हैं। बदलते समय के साथ चलना, अपनी पहचान खोना बहनों बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं को नए अवसरों के अनुसार विकसित करना है। और साथ ही देखिए बहनों, आधुनिकता अपनाएं, नई टेक्नोलॉजी भी सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, लेकिन अपनी संस्कृति, परंपराएं और संस्कारों को भी हमेशा साथ रखें, क्योंकि यही संतुलन हमें मजबूत बनाता है।
1: जी,
0: जो महिलाएं सीखने और आगे बढ़ने का साहस रखती हैं वो हर परिस्थिति और बदलाव को सफलता में बदल सकती हैं।
1: बिल्कुल बदल सकती हैं बहनों, बदलता समय अपने साथ जो है ना नई चुनौतियां लेकर आता है, नए अवसर और नए अनुभव लेकर आता है। कई बार ये बदलाव हमें दुविधा में भी डाल देते हैं बहनों, लेकिन जब हम इन्हें पॉजिटिव सोच और खुले मन से स्वीकार कर लें ना बहनों, तो यही बदलाव हमारे जीवन को नई दिशा भी दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, और कहते भी हैं कि वक्त के साथ चलना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है।
1: जी,
0: जो बदलाव को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दया, और सुनवाते हैं अपनी बहनों को एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: बहनों, इन दिनों देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों की बात करें, कॉलेजों में या फिर सामाजिक संस्थाओं या विभिन्न माध्यमों से ये संदेश दिया जा रहा है कि नशा ना केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है।
1: जी हाँ, देश भर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल नशा छोड़ना ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में आने से बचाना भी है।
0: जी बिल्कुल बहनों, पहले ये माना जाता था कि नशे की समस्या मुख्य रूप से लड़कों या पुरुषों तक ही सीमित है, लेकिन बदलते समय के साथ ये चुनौती बेटियों तक भी पहुँच रही है। यानी कि कुछ ऐसी युवतियाँ या कुछ बेटियाँ भी जो है इसकी गिरफ्त में आ रही हैं। इसलिए अब हमें ये समझना होगा कि नशे से जो बचाव है उसकी जिम्मेदारी केवल किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की है।
1: जी हाँ, किशोरावस्था और युवावस्था जीवन का वह दौर होता है बहनों, जब बच्चे नई नई चीज़ों को जानने और अपनाने की कोशिश करते हैं। कभी दोस्तों का दबाव, कभी दिखावा, कभी तनाव और कभी जिज्ञासा का कारण वे गलत रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में माता पिता और अभिभावकों की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बहनों। और माता पिता क्योंकि इस कड़ी में एक अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वो बच्चों से सीधे जुड़े होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत जो है वो करनी चाहिए। बेटा हो या बेटी, उनसे रोज़ बातें करें, उनकी समस्याएं सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की भी कोशिश करें।
1: जी,
0: जब घर का वातावरण खुला और विश्वासपूर्ण होगा तो बच्चे अपनी बात बिना डर के माता पिता से साझा कर पाएंगे और यही विश्वास उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकने में मदद भी करता है।
1: जी हाँ, और बहनों एक और महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों की जो संगति है वो कैसी हो। जी देखिए, अक्सर कहा जाता है कि संगत का असर अवश्य पड़ता है, इसलिए हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो किन किन दोस्तों

0: के साथ समय बिताते हैं, उनकी रुचियां क्या हैं और वे अपना समय किस प्रकार व्यतीत कर सकते हैं, कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और साथ ही साथ बहनों इस बात का भी ख्याल रखें कि आप अगर खुद अपने बच्चों से दोस्ती करते हैं तो शायद उन्हें बाहर दोस्तों की इतनी कमी महसूस ना हो। तो सबसे पहले आप खुद अपने बच्चों के दोस्त बने ताकि उन्हें बाहर के जो है वो कम ही और कुछ सिलेक्टेड जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो खुलकर उनसे बातचीत करें और अच्छा गाइड करें, ऐसे लोग ही जो उनकी लाइफ में रहें।
0: जी हाँ, और इसके साथ देखिए इसका आप बच्चों की देखरेख तो करें लेकिन इसका मतलब बहनों ये नहीं है कि हर समय आप उन पर शक करें या फिर अधिक रोक टोक करें। बच्चों को विश्वास और स्वतंत्रता दोनों की ज़रूरत होती है। आवश्यकता केवल संतुलन और निगरानी व साथ ही मार्गदर्शन की होती हैं जो कि हमें अपने बच्चों को देना है।
1: जी बिल्कुल। युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है बहनों जब बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो बाहर के जो उनका पीयर ग्रुप होता है उन्हीं की बातों को सबसे पहले मानते हैं और उन्हीं के लगता है कि माता पिता तो बस उन्हें डांटते हैं और टोका टाकी करते हैं, हर चीज़ में रोक टोक करते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ उतनी ही सख्ती आप बरतें जिसमें जो है आपका बच्चे का जो विश्वास है वो आप पर बना रहे। और इसके अलावा अगर बच्चों की किसी खेल में रुचि है, संगीत है, पुस्तकें पढ़ना है, मतलब किताबों में उनका अगर ध्यान लगता है, योग और जो दूसरी जो रचनात्मक गतिविधियां होती हैं उनके लिए आप उन्हें ज़रूर प्रोत्साहित करें। जब उनका समय जो है वो पॉजिटिव कामों में लगेगा तो जो नेगेटिव थॉट्स है या जो नेगेटिव बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहने की संभावना भी उनकी बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनीता। और आज जो है मानसिक तनाव भी युवाओं के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है।
1: जी
0: देखिए ना, पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता, करियर की चिंता और सामाजिक अपेक्षाएं कई बार बच्चों को तनावग्रस्त कर देती हैं। तो ऐसे समय में उन्हें डांटने या संतुलन जो है उनकी तुलना दूसरों से करने के बजाय उनका मनोबंध बढ़ाना है। ये देखिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम जो है ना ऐसे समय में जो है बच्चों को ऊपर ज़्यादा गुस्सा दिखा देते हैं और क्या होता है कि बच्चे वहीं जो है अपना संतुलन बिगाड़ देते हैं।
1: जी बिल्कुल। और इसके अलावा यदि किसी बच्चे के व्यवहार में आपको अचानक चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में रुचि ना लेना या परिवार से दूरी बनाना, ऐसे कोई भी बदलाव आपको दिखाई दे जो सामान्य नहीं है तो उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय उन्हें प्रेम और धैर्य से उनकी बात सुने और फिर उनकी सहायता करें। आवश्यकता पड़ने पर आप विशेषज्ञों की सलाह लेने में भी संकोच ना करें और समय पर मिली सही मदद आपके बच्चे को एक नई दिशा और एक नया जीवन दे सकती है।
0: जी, और जब माता पिता बच्चों से बात करेंगे ना बहनों तो उन्हें साथ ही उन्हें समय देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, सही गलत का ज्ञान देंगे और उनके मित्र की तरह जो उनका साथ निभाएंगे, तब नशे जैसी बुराइयों के लिए उनके जीवन में कोई जगह नहीं बचेगी।
1: जी, तो बहनों हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपके बेटों और बेटियां दोनों को हम सम्मान जो है सम्मान दें उन्हें और एक समान उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें समान अवसर दें आगे बढ़ने के और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करें क्योंकि बच्चे केवल हमारे आज का ही हिस्सा नहीं है, वो हमारे कल की भी पहचान है।
0: जी।

0: बहनों, रसोई की महक में छिपा है प्यार, हर व्यंजन में बसता है परिवार, स्वाद और सेहत का हो संगम सुहाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट खाना खजाना।
1: जी हाँ बहनों, कहते हैं अच्छा भोजन सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि दिल को भी खुश कर देता है। स्वाद, सेहत और मसालों की खुशबुओं से भरे हमारे खास सेगमेंट खाना खजाना में आज जानेंगे ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी के बारे में जो आपके खाने के स्वाद को कई गुना और बढ़ा देगी।
0: जी बिल्कुल, तो आइए जानते हैं नींबू के छिलकों से बनने वाली बेहद ही स्वादिष्ट और पौष्टिक चटनी की रेसिपी के बारे में। बहनों, आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों में नींबू का जो इस्तेमाल है वो दया काफ़ी बढ़ जाता है रसोई में। ऐसे में हम नींबू पानी बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, कई ऐसे ड्रिंक्स बना लेते हैं जिसमें हम नींबू निचोड़ देते हैं और जो बचा हुआ छिलका है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप उन छिलकों का भी बहनों अच्छे से यूज़ करती हैं तो उससे आप एक मज़ेदार चटनी बना सकते हैं। तो अगर आप नींबू के छिलकों की चटनी बनाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सामग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो नींबू के छिलकों की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं नींबू के छिलके बचे हुए, जिसमें थोड़ा जो है नींबू का गूदा भी हो, लगभग 250 ग्राम।

0: जी,
1: और गुड़ आपने ले लेना है 300 ग्राम या 350 ग्राम भी आप ले सकती हैं स्वादानुसार, और काला नमक आप एक छोटा चम्मच लें, सादा नमक स्वादानुसार, भुना जीरा पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, और कलर के लिए अगर आप दूसरी मिर्च जो है वो तीखी नहीं होती है वो आप अगर लेना चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं
0: जी।
1: और साथ ही आप अजवाइन लें एक छोटा चम्मच, और हींग भी आपको लेना है एक चौथाई चम्मच या दो चुटकी के लगभग, यानी जो आप अचार बनाती हैं नींबू का बिना तेल वाला, जो सामग्री आप उसमें भी इस्तेमाल करती हैं वही हैं। तो अगर आप नींबू के छिलकों की चटनी बनाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सामग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो नींबू के छिलकों की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं नींबू के छिलके बचे हुए, जिसमें थोड़ा जो है नींबू का गूदा भी हो, लगभग 250 ग्राम
0: जी,
1: और गुड़ आपने ले लेना है 300 ग्राम या 350 ग्राम भी आप ले सकती हैं स्वादानुसार, और काला नमक आप एक छोटा चम्मच लें, सादा नमक स्वादानुसार, भुना जीरा पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, और कलर के लिए अगर आप दूसरी मिर्च जो है वो तीखी नहीं होती है वो आप अगर लेना चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं
0: जी।
1: और साथ ही आप अजवाइन लें एक छोटा चम्मच, और हींग भी आपको लेना है एक चौथाई चम्मच या दो चुटकी के लगभग।

0: यानी जो आप अचार बनाती हैं नींबू का बिना तेल वाला, जो सामग्री आप उसमें भी इस्तेमाल करती हैं वही आप इस चटनी में भी यूज़ कर सकती हैं।
1: जी, तो इसकी विधि आपको बता दें बहनों, नींबू के छिलकों की चटनी बनाने के
0: साथ सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, बच्चों के साथ साथ बुज़ुर्गों को भी ये चटनी बहुत पसंद आएगी। खाना खजाना के स्वाद भरे इस सफ़र के बाद अब समय है एक खूबसूरत गीत का, तो चलिए दया बहनों को सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: कहते हैं सुनीता, यादें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और जब बात हो 90 वर्षों की, तो ये यादें इतिहास नहीं, भावनाएं बन जाती हैं।
1: जी बिल्कुल दया, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों की सुनहरी यात्रा वो सफ़र है जिसने ना सिर्फ दशकों तक भारत को आवाज़ दी, बल्कि हर घर, हर दिल और हर रिश्ते को जोड़ा है। एक छोटा सा रेडियो स्टेशन और उससे निकलती एक नई उम्मीद।
0: जी हाँ, 8 जून 1936 को शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो का सफ़र, यानी कि हमारी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, वो समय जब रेडियो खिड़की या दुनिया को देखने या समझने का और लोगों से जुड़ने के लिए एक मात्र माध्यम था, जहाँ से खबरें, संगीत और दुनिया की हलचल लोगों के जीवन में आती थी।
0: जी हाँ, सुनहरी यादें 1950 से 1980 की, ये दशक आकाशवाणी का स्वर्णिम काल थे। 1957 में विविध भारती का जन्म, हवा महल, जयमाला, गीतमाला और असीम सयानी साहब की जादुई आवाज़। नमस्कार भाइयों और बहनों।
1: जी, इन कार्यक्रमों ने रेडियो को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं का पुल भी बना दिया। वहीं हर शाम लोग रेडियो के चारों ओर जमा होते, जैसे कोई अपना ही हालचाल सुनाने आ गया हो।
0: जी हाँ, समय बदला लेकिन रेडियो का महत्व और बढ़ा। जैसे जैसे ग्रामीण, जैसे कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य और महिला जागरूकता प्रसारण, कृषि से जुड़े सुझाव, युवाणी के जरिए युवाओं की आवाज़ और आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता।
1: जी बिल्कुल, रेडियो ने हमेशा जन जन की ज़रूरतें समझी और देश की विविधता, भाषा, संस्कृति, लोकगीत सबको एक सूत्र में पिरोया।
0: जी, अगर बात करें डिजिटल युग में आकाशवाणी की, तो आज के समय में रेडियो ने खुद को नए रूप में प्रस्तुत किया है। अब रेडियो सिर्फ तरंगों में नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स, डिजिटल आर्काइव, पॉडकास्ट और वेब स्ट्रीमिंग, एफएम चैनल और आकाशवाणी लाइव ऐप में भी आप सुन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल बहनों, आकाशवाणी का सफ़र सिर्फ तकनीक का सफ़र नहीं बल्कि हम सभी की यादों का सफ़र भी है। 90 वर्षों में आकाशवाणी ने जहाँ देश को एकजुट किया, वहीं लोगों की भावनाएं, कहानियां, गीत और अनुभव भी सजोए। आज 90 साल बाद हम गर्व से कह सकते हैं कि आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो नहीं बल्कि हमारे देश की धड़कन है।
0: जी,

0: महिला सम्मेलन। जी हाँ, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। दोपहर के 1 बजने को है। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के 3 पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure and partnerships while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, center and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the center and states will play a pivotal role in realizing the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav virtually inaugurated a 20

ट्यून इन है आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ और ये वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको हिंदी गाने, नए पुराने हसीन अफसाने और साथ ही करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातें भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ, मोहित चौहान की आवाज में, फिल्म जब वी मेट से। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जुड़े हैं आप आकाशवाणी FM शिमला के साथ, आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सभी के लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एंजॉय करें आप प्रोग्राम फिल्म संगीत। प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग आप सभी के लिए फिल्म खूबसूरत से अभिजीत की आवाज़ों में। गीतकार हैं गुलजार और संगीत दिया है जतिन ललित ने। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश। आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: FM शिमला पर एंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम फिल्म संगीत। प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग आप सभी के लिए फिल्म विश्व आत्मा से साधना सरगम की आवाज में एंजॉय कीजिएगा।

0: एफएम शिमला पर अभी आपने एंजॉय किया सॉन्ग फिल्म वी आर अ फैमिली से राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन की आवाज़ों में।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रोग्राम का नेक्स्ट ट्रैक फिल्म जानम समझा करो से अलका याग्निक की आवाज में आप सभी के लिए, ओनली ऑन FM शिमला।

अभी आपने एंजॉय किया सॉन्ग फिल्म हम तुम पे मरते हैं से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आप सभी के लिए एंजॉय कीजिएगा ओनली ऑन आकाशवाणी FM शिमला पर।

प्रोग्राम फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आप ट्यून इन हैं 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ।

एफएम शिमला पर वक्त है कार्यक्रम सबरंग का। कार्यक्रम सबरंग में सुनवाते हैं आपको गजल पंकज उदास की आवाज में।

0: कार्यक्रम सबरंग में आइए अब सुनते हैं सूफी कलाम कैलाश खेर की आवाज में।
1: यार मेरा

FM शिमला पर एंजॉय कर रहे हैं आप कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम सब रंग में आइए आप सभी को सुनवाते हैं नुसरत फतेह अली खान में ये की आवाज़ में ये कवाली।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली स्टूडियो से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा,

0: कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।

0: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
0: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट ना आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व

0: का फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप ट्यून इन है 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
4: हर खुशी अब लगे नमी।
3: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

FM शिमला पर वक्त है कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। जी हाँ, कार्यक्रम में हम आप सभी को सुनवाएंगे लोक गीत। कार्यक्रम का पहला लोक गीत आप सभी को सुनवाने जा रहे हैं सिरमौरी लोक गीत सुशील कुमार भृगु की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम शिखरों के स्वर में आज बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आप ट्यून इन है 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव और FM शिमला 103.7 MHz पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की उदासीनता और सुस्त कार्यशैली के कारण ऊना के हरोली में बन रही बल्क ड्रग पार्क परियोजना तय गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस कारण प्रदेश को आर्थिक और औद्योगिक स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल को ये परियोजना कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी, इस कारण राज्य को इसका समय पर लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बन जाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार से राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर इस परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा करने की मांग की। सोलन जिला में जनगणना के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर है। जनगणना निदेशक दीप शिखा की अध्यक्षता में आज सोलन में कर्मचारियों को जनगणना का प्रशिक्षण

0: प्रशिक्षण दिया गया और इस कार्य की बारीकियों से अवगत करवाया गया। दीप शिखा ने इस मौके पर कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इन दिनों स्वगणना का कार्य चल रहा है। 16 जून से 15 जुलाई के बीच मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए लगभग 18,600 कर्मचारी फील्ड में तैनात किए जाएंगे।
1: फर्स्ट फेज जो है वो 16 जून से 15 जुलाई के बीच में चल रहा है और हमारा इसमें स्वगणना का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत की कोई भी जो हमारा जनमानस है, आम जनता है, वो स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in पे जाके उस पे FAQs दिए हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपनी मोबाइल नंबर के थ्रू उसमें एंटर करके अपनी लोकेशन मार करके 33 जो प्रश्न है आधिकारिक रूप से उनके आंसर भर सकते हैं पोर्टल पे। तदुपरांत उनको एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होगा, जिसको की प्रगणक जब 16 जून से 15 जुलाई के बीच में आएंगे तो उनके साथ शेयर करेंगे और फाइनली वो उसको एक बार वेरीफाई करके पोर्टल पे सबमिट कर। पूरे हिमाचल में हमारे करीबन 18,600 के करीब करीब जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगी है।
0: ईरान के हॉर्मुज जलडमरू में एक भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में हमीरपुर जिला के गलोड़ के रहने वाले नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदित्य शर्मा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि राज्य सरकार इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर मुमकिन सहायता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति और दुखी परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की भी प्रार्थना की है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौतम ने देश का प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क शुरू किया है। वे बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं। राज्य सरकार ने सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। अभी तक अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त वेतन का केवल 40% और महंगाई भत्ते के साथ आवास भत्ता दिया जा रहा था। इसके लिए सरकार ने CCS नियम 1972 के नियम 56 में संशोधन किया है। जिन कर्मचारियों ने पहले पुराने प्रावधानों के तहत अध्ययन अवकाश लिया था, उन्हें भी संशोधित नियमों अनुसार वेतन के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं चंबा जिला की चिट्ठी। लेखक हैं विकास ठाकुर और वाचक स्वर शशि चौहान का है।
0: चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण साच पास को लोक निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड समय में बहाल कर दिया है। लगभग 14,500 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले इस मार्ग से बर्फ हटाकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। मार्ग खुलने से पांगी घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मार्ग बंद होने से लोगों को जम्मू या कुल्लू के रास्ते करीब 750 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर चंबा पहुंचना पड़ता था। अब ये दूरी मात्र 172 किलोमीटर रह जाएगी। नगर परिषद चंबा के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गए। चुनाव परिणामों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर बढ़त बनाई, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी 5 सीटों पर विजयी रहे। मतगणना के बाद समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। प्रशासन ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाया। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में भी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। करवाल पंचायत निर्विरोध चुनी गई, जिसके लिए पंचायत को सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि जिले में कुल 411 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें 4 प्रधान, 7 उप प्रधान तथा 400 वार्ड सदस्य शामिल हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्वाइकल कैंसर रोकथाम अभियान के तहत चंबा जिले में भी HPV वैक्सीन टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। 14 वर्ष तक की किशोरियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य कम उम्र में ही बेटियों को

0: को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करना है। जिले का ऐतिहासिक व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेला इस वर्ष 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उपायुक्त मुकेश रेपासवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने दायित्वों का गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मिंजर मेला चंबा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है तथा इसके मूल स्वरूप और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिला मुख्यालय के सुल्तानपुर वार्ड के ओबड़ी संपर्क मार्ग की जर्जर स्थिति स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने मुख्यमंत्री से इस सड़क की शीघ्र मरम्मत करवाने की मांग की है। जनगणना 2027 की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण व आवास जनगणना का कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त व जिला जनगणना अधिकारी मुकेश रेपासवाल ने बताया कि इस बार जनगणना में आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है तथा नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी प्रदान की गई है। नागरिक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। पूरे देश की तरह चंबा जिले में भी ईद उल अजहा का पर्व श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक चौगान मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। बैरागढ़ पांगी वायसाज पास मार्ग पर पर्यटकों से भरा एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 7 पर्यटक और 1 चालक शामिल हैं। बेंगलुरु से आए ये पर्यटक साजपास क्षेत्र में बर्फ देखने गए थे। उपायुक्त मुकेश रेपासवाल ने बताया कि दुर्घटना का पता चलने के बाद पुलिस और राहत दल ने दुर्गम क्षेत्र में राहत व बचाव अभियान चलाया। जिला परिषद और पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्यों ने भी अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में आयोजित समारोह में 18 जिला परिषद सदस्यों और 135 पंचायत समिति सदस्यों ने शपथ ली तथा अपने क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी हाल ही में चंबा जिले का दौरा किया। खजियार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रत्येक मतदाता का वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने जिले के मतदाताओं से भविष्य के चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
1: चंबा जिला की चिट्ठी आपने सुनी। लेखक थे विकास ठाकुर, वाचक स्वर शशि चौहान का था। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
3: हर खुशी अब लगे नमी,
2: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए एफएम।

जुड़े हैं आप आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत में ओल्ड हिट्स सॉन्ग्स का। कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको ओल्ड सॉन्ग्स। कार्यक्रम का पहला सॉन्ग आप सभी के लिए फिल्म मेला से शमशाद बेगम की आवाज़ में।

प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग आप सभी के लिए फिल्म श्री 420 से मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

युवाओं की धड़कन युवाओं की ही आवाज़ होगी। इस खूबसूरत मोड़ पर आज एक नई शुरुआत होगी। खोल दीजिए अपने दिल के सारे दरवाजे, क्योंकि इस सफ़र में सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अंकिता ठाकुर। और आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर, दिल की बात युवाओं के साथ।

दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात किताबी बातें नहीं करेंगे, लेकिन उस दिल की बात करेंगे जो कभी कैरियर की चिंता में धड़कता है तो कभी सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनने में मसरूफ रहता है। आज का युवा रोज़ एक नई जंग लड़ रहा है, अपनों की उम्मीदों से, समाज के तानों से और सबसे बढ़कर खुद से। तो बस अगले आधे घंटे के लिए अपनी सारी चिंताओं को ताले में बंद कर दीजिए क्योंकि ये वक्त सिर्फ आपका है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम एक ऐसे गाने के साथ जो आपके अंदर की हिम्मत को जगा देगा।

जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व यानी 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी सभी हिमाचल वासियों को उपलब्ध रहेगा। निवासी sesensus.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं प्रवेक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे। प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंधान कार्य हेतु ही किया जाता है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और आज हम बात कर रहे हैं दिल की बात युवाओं के साथ। कॉलेज खत्म होते ही या ग्रेजुएशन के दौरान ही हर तरफ

मन की उलझनों को आज एक नया रास्ता मिलेगा। हर युवा को अपने दिल का कोई वास्ता मिलेगा। जो बातें अब तक सिर्फ खुद से की थी आपने, उन बातों को आज शब्दों का एक गुलदस्ता मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे बड़े विलन पर, वो स्क्रीन जो सुबह उठते ही हमारे चेहरे के सामने आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया की। आजकल हम अपनी खुशियाँ इस बात से तय करते हैं कि हमारी रील पर कितने व्यूज़ आए हैं या हमारी फ़ोटो पर कितने लाइक्स मिले हैं। किसी और की वेकेशन की तस्वीरें देखकर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी बोरिंग है। इसे आजकल की भाषा में कहते हैं फोमो, यानी फीवर ऑफ मिसिंग आउट। पर क्या कभी सोचा है, कैमरे के पीछे की हकीकत कोई नहीं दिखाता, रोता हुआ चेहरा कोई पोस्ट नहीं करता। इसलिए उस 15 सेकंड की परफेक्ट दुनिया को देखकर अपनी असली और खूबसूरत ज़िंदगी को कम मत आंकिए। आज रात सोने से पहले कम से कम 1 घंटे के लिए फ़ोन को खुद से दूर रखकर देखिए, दिल को बहुत सुकून मिलेगा।

दोस्तों, दिल की बात तब तक अधूरी है जब तक हम उस दर्द की बात ना करें जिसे हम अक्सर छुपा जाते हैं, अकेला पर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई समझने वाला नहीं है, हम हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत कुछ दबा देते हैं। युवाओं से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। रोना कमज़ोरी नहीं है। अगर दिल भारी हो तो अपने किसी सच्चे दोस्त से, भाई बहन से या माता पिता से बात कीजिए। बात करने से बात बनती है। खुद को कभी अकेला मत समझें।

वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी किसी नए दिन नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला। नमस्कार।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से, जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की

0: इस सेना में भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना उस कार्यरत जवानों की अफसरों की जहां बाज योगदान उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 days बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया। आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फ़िलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामणि में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी।
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
0: जी जी।
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र

0: बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी,
0: तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की जानकारी थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा, तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
0: जी
1: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
0: बिल्कुल।
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल।
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम सीसीटीवीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पर आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल।
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
0: बेसिकली जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
1: जी। जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल। ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं आप सीटीसी में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक ख़ास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक

0: क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
1: ऐ मेरे वतन के लोगों।
0: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
1: बहुत प्रिय है।
0: और कोई खास वजह?
1: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिएबली रहता ही था।
0: जी जी,
1: तो दिल को छूता है ये।
0: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई, बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से, तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे

0: वहाँ पर रहता है, तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है,
0: जी
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो
0: बिल्कुल
1: यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है।
0: जी
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेनियर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान
1: ये
0: है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड ज़िले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियाँ थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे, तो इसको इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य,
1: सब एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी, वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इस्टेब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ,
1: जी
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा

0: मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनना बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी,
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट।
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं। जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं ज़रूर बता चाहूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशन कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका, हमारे IG सर थे श्री संजय कुमार, हमारे DIG सर श्री सुमित जोशी
1: जी,
0: हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के SP थे श्री YS रमेश, उसके अलावा CRPF के जो ASP ऑफ्स थे इमानुल बास्की और RC मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई, और हमारे IG सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी,
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, उसके बाद जब एक कम्प्लीशन होता है, ठीक है गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी, शायद वो भी दबा के रखा होगा।

0: उसके बाद जब एक कम्प्लीशन होता है, ठीक है गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी, शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो, तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
1: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे, इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचने लगी हैं, ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज़ के, और वो बैरियर तोड़ दिया SSB ने, वहाँ जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
0: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
1: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
0: जी,
1: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे, और मोटिवेशन तो होता ही है फोर्स में, जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
0: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम कर रहे हैं आगे जाके।
1: बिल्कुल,
0: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में जो ट्रेनिंग आप।
1: बिल्कुल, हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
0: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
1: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
0: जी।
1: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
0: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
1: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
0: जी।
1: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
0: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकेंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने?
1: बिल्कुल,
0: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
1: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
0: जी,
1: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
0: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती होंगी।
1: बिल्कुल,
0: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी?
1: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
0: जी,
1: तो उसके बाद एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतड़ा जो आप वो कहिए, तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है, तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है

0: जानने की जरूरत है। पर मेरी वाइफ ने जितने जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा,
1: जी
0: अलग
1: जी
0: अलग जगह
1: जी
0: ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं,
0: जी
1: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फ़र्क आ गया है,
0: जी
1: मॉडर्न पढ़ाई है, और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का या?
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं। बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी
0: वो
1: जी
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है। बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं। तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
1: जी,
0: हो जाए।
1: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है,
0: बिल्कुल
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं। और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनकी सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता
1: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
0: है।
1: हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके
0: बिल्कुल
1: लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुँह ज़ुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद हैं ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं, आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली DDO का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: okay.
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको DIG लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ DDO वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन AIR ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं CTC SSB श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑलराइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं, महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन अच्छा। लिख रहे हैं okay. आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे।

0: चंद्रशेखर तिवारी हमें ये मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी?
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है. दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल.
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं. एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है. एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे.
1: बिल्कुल.
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं.
1: बिल्कुल.
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं. तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का. और दोनों ही, मैंने जो देखा है कि दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं. महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सेलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं.
0: ओके.
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है. अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है.
0: okay.
1: बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स, अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को. और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे, कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएँ बराबर का योगदान दे रही हैं.
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ. क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है.
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है. और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए.
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं. शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है, जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है. और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे.
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है.
1: जी, मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे.
0: ओके.
1: जी,
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ. नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है.
1: बिल्कुल.
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी.
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर, उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है. रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से. मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे के जो, जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में. मैं ये नहीं कह रहा कि SSP सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है. और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग. और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके
0: जी,
1: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वरांस करेंगे और उस पर आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे.

0: मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, नहीं कि कम्प्लीटली. लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया. आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट ये है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही.
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में. ठीक है, आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे.
1: बिल्कुल नज़र रखते होंगे, और उन पे हम भी नज़र रखते हैं. नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है, और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं, और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है.
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं. बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं.
1: बिल्कुल.
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है. रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो आपको पूरे देश में और काफ़ी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है.
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद.
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं. एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं. मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा.
1: धन्यवाद.
0: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया. जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम ज़रूर लिखें. अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं, और वो कह रही हैं हम सब की तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें. समय बीतता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊँगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं. और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं, और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें. सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है. जय.
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ. कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा. साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को. शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश. लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं. तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी ज़ुबानी बता के जाएं.
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ.
0: अच्छा.
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ.
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं. किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है.
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है.
0: Right then, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ. आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें.

स्वागत है आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। 5 बज चुके हैं, आइए सुनवाते हैं आप सभी को मंडियाली लोकगीत। आगाज कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत आवाज़ के साथ, सुनिए ये मंडियाली लोकगीत हेमराज चंदेल की आवाज़ में।

मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है पंगवाली कार्यक्रम।

पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम शून्यवाणी सुफे जने ब्रह्मदत्त शर्मा तरफ बेलदी नमस्ते। जी तो शून्यवाणी अखबार फिर से सुभ्याणी के स्वागत है। स्वागत का जद रवि है कार्यक्रम शून्य लोगों भले इसे रेडियो बोट मोबाइल बोट चलती मोटर कार अंतर सुभ्याणी के अखबारी स्वागत है। कार्यक्रम अंतरास बदेने लोकगीत आते आज गणे जे कलाकार आई से आई विनय अवरूल शांति विष्ट राज प्रभाकर तथा तथा साथी के आवाज तरह से बदेन लोकगीत सुनाने सुनाने लेकिन कार्यक्रम अंतर से गलबात जे करनी अस्ती से मेक इन इंडिया और जनगणना 2027 खास करके जे हैं श्री माता मिंदलवासिनी की पवित्र छड़ी यात्रा जे तैयारी चलो रही है आजकल तस्पुटे में से गलबात करनी है। कार्यक्रम में शुरुआत जहाँ से करनी है आजकल जे महत्वपूर्ण संदेश हस्ता महत्वपूर्ण जे गलबात जहाँ से तुम्हें जे लानी है से जनगणना 2027 प्रथम चरण अंतर जे मकान के सूचीकरण भवन गोरा मकान के जे गणना भवन गोरी ऐसे आयोजन जे हस्ता से हिमाचल प्रदेश राज्य जे निर्धारित जे तिथि बतौरी जे दिनांक बतौरी से 16 जून 2026 के यहाँ 15 जुलाई 2026 तक भूण आस्ता इसके यहाँ ठीक 15 दिन पहले यानी 1 जून 2026 के यहाँ 15 जून 2026 तक रे स्वज गणना यानी विकल्प भी सभी हिमाचल वासी के उत्पठे उपलब्ध आई जे निवासी जथंतर के अस बताई सकते जे पोर्टल आस्ता से sc.census.gov.in पोर्टल पुट घाई करके स्वयं त्यों जानकारी जे तसे ले सकते और भर सकते। जनगणना 2027 कार्य जे अस्ता से डिजिटल माध्यम जे संपादित होने लगोरा जैसे अंतर्गत जे प्रगणक तथा पर्यवेक्षक जे अस्ते से मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन माध्यम जे सूचनाएं जे तसे संकलित कर सकते। प्रथम चरण अंतर जे मकान अस्ते तसे स्थिति परिवार अंतर जे उपलब्ध सुविधाएं आई और परिसंपत्ति जे संबंधित कुल जे तत्ति प्रश्न पूछीण अस्ते परिवार के यहाँ की चीज़ें तुम्हें कहीं उपलब्ध आई जनगणना अधिनियम।

1948 के अंतर्गत जनगणना जैसी से दूरी है और जानकारी पूरी तरह गोपनीय है। ऐसे मतलब ये कि जे उपयोग नीति निर्माण जे अनुसंधान कार्य हेतु जैसे भूणस्ता तो ए गल थी जे जनगणना 2027 स्पुठा से मैं तो जे गलबात की कार्यक्रम में जे शुरुआत हस्ती विनय अवरोले आवाज अंतर जे लोक भजन अस्तु सुनेस लोक भजन फिर लें तुझे होरी गलबात।

विनय अवरोले आवाज इंद्रबेदी लोक भजन है, सुने बड़े सुनो जरूर आनंद निरभ होना कि शिव कैलासों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना। तो कार्यक्रम अंतर से जे कार्यक्रम में शुरुआत किया बाद असें जे प्रदेश कुछ खास खबर भी सुनानी है। तो आजकल जे खास जे समाचार आई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारतीय संविधान के लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रदेश भरी अंतर भाजपाई जैक्या हवन यज्ञ क्या और तन्हें लंबी उम्री दुआ मांगी है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता तन्हें जे युवा स्ते तन्हें कल जन कल्याणकारी जे गतिविधियाँ तन्हें बढ़ चढ़ करके भागने आह्वान किया। साथ ही साथ जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखवे तन्हें बोलू कि प्रदेश सरकार जैसे से व्यवसाय तथा सुगमता बढ़ाने दी जय तसे प्रतिबद्ध आई। प्रदेश सरकार जे उप मुख्यमंत्री मंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधायक जिन्हें वेतन थे से डेफर भूत हैं तसे अधिसूचना जे तसे वापस जुलाया के बकाया राशि जे तसे तेने पूरी अतिनी अस्ती नहान अंतर सर्वसम्मत जे जे चुनौती पंचायत समिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भाजपा दूसरी बार जतवा जमावा कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व अंतर केंद्र सरकार जे त सफल 12 वर्ष पूरे होने उपलक्ष्य पुठवे विश्वास तथा विकास है जे 12 वर्ष गरीब कल्याण तसे 12 वर्ष कार्यक्रम अंतर हिस्सा लेने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 12 तथा 13 जून शिमला अंतर दो दिवसीय दौरे पुठे भुणे आई। भाजपा प्रदेश महासचिव पायल वैद्य तेने बोलू कि 12 जून अंतर जे 12 जून दे नड्डा साहब जे तसे हिमाचल अंतर शिमला अंतर स्वच्छता अभियान अंतर भाग नैना आस्ता और इसके अलावा जे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन अंतर समाज जे जे विभिन्न वर्ग अस्ते तने संबोधित जे तसे तने कन आए। 13 जून अंतर से मीडिया प्रतिनिधिया जे तने जे विश करके संवाद करना है और केंद्र सरकार जे सहयोग हिमाचल प्रदेश जे विकसित जे भूरी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना तने परियोजनाएं के बीच अवलोकन जे अस्ता तसे तने करना है। प्रदेश सरकार अंतर ने छोटी खबर है कि प्रदेश सरकार अंतर सेवा अवधि दौरान अंतर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जे अध्ययन अवकाश पुठे जाने वाले जे सरकारी कर्मचारी है तिन्हें वेतन जस्ता तसे अधीन जे पूरा निर्णय जे तसे निराजता अभियन तक अध्ययन अवकाश नैने वाले जे कर्मचारी अस्ते और अवकाश पुठ गहने वाले जे कर्मचारी अस्ते तथा पूर्व वेतन केवल 40% तथा महंगाई भत्ते जे आवास भत्ता भी देना है और साथ ही साथ इसके यहाँ जे सरकारें CCS नियम 1972 जे नियम अस्ते नियम 56 तसे संशोधन जे तसे से भी किए रहा जतंत्र के कर्मचारी जे अस्ते तसे पहले पुराने प्रावधान पड़ते हैं तंत्र जे तसे अध्ययन अवकाश नैना थे और तन्हें संशोधित नियमी के अनुसार वेतन जे बकाया राशि भुगतान भी से भुना है। राज्य सरकारें मानना है कि उच्च शिक्षा तथा उन्नत व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने वाले जे है ना केवल कर्मचारी है बल्कि व्यक्तिगत विकास जे है तन्हीं वेली भूंता और तन्हें जे कार्य कुशलता और प्रभावशीलता जे तसे बद्दी इसके अलावा आम जनता जे है तसे बेहतर सार्वजनिक सुविधा सेवाएं उपलब्ध करवाई थी भाई अभी ऐसा वेतनमान अंतर बताओ भाई। तो अथिया कुछ प्रदेशे और देशे समाचार तो शांति विष्ठे आवाज अंतर्विदेन लोकगीत है तो सुनस लोकगीत फिर लें तो होरी गल बात।

ज्ञान कने कौशल विकास जे हैं युवा अस्ते तने हुनर और उद्योग जे जरूरत अस्ति तने हिसाब जे विकसित करना। तो जे बौद्धिक संपदा अस्ति तसे जे मतलब रक्षा पेटेंट और कॉपीराइट तसे नियम जे तसे मजबूत बनाना, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा जे अस्ता तसे बनाना, कैसे साफ बनाना, इसे औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट शहरियां अंतर के तने निर्माण करना। कार्यक्रम में जे मुख्य स्तंभ अस्ते चौर पिलर अस्ते चौर स्तंभ अस्ते नई प्रक्रियाएं आई, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार कन दी सुगमता बढ़ाना और नया बुनियादी ढांचा आए, आधुनिक लॉजिस्टिक्स तथा हाई स्पीड संचार नेटवर्क विकास करना बुनियादी ढांचा है ना जी। तो नए क्षेत्रीय अंतर जी खास करके विनिर्माण आई और साथ ही साथ सेवा क्षेत्रीय अंतर प्रत्यक्ष तथा विदेशी निवेश जे तसे तन्हे द्वार खोलन। नई मानसिकताएं सरकारी आख नियामक यानी कि रेगुलेटर बजाय तसे सहयोगी फैसिलिटेटर बने भाई, रेगुलेटरी जगह तू फैसिलिटेटर बने भाई। कहने मतलब ये है कि जे नियामक के बजाय तू सहयोगी बने और ऐसे अतंतर जे तसे कम करना। मुख्य विनिर्माण निर्माण क्षेत्र तस अंतर शुरुआत अंतर ये कि 25 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पहचान करनी है, हालांकि वर्तमान अंतर मेक इन इंडिया 2.0 तहत मुख्य रूप से स्थायी क्षेत्रीय अंतर ध्यान जे तसे केंद्रित करने लोरा, जत अंतर की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तथा मोबाइल आई भारत जे ता दुनिया अंतर दो का सभ्याख्या बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। रक्षा उत्पादन अगर अस गल रक्षा मंत्रालय सहयोग अंतर जे मिसाइल आई रफेल लड़ाकू विमान अस्ते भारत अंतर विनिर्माण भूण लगो रे और ऑटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक जे वाहन अस्ते 100 के भी अधिक देश अंतर निर्यात करने लगो रे, यानी कि भारत फार्मास्यूटिकल तथा बायोटेक्नोलॉजी अंतर भी स्वास्थ्य क्षेत्र अंतर आत्मनिर्भरता बढ़ाने दी विशेष रूप जे जे त इंफ्रास्ट्रक्चर जे तसे विकास जे तूण गोरा और वर्तमान स्थिति अंतर जे प्रभाव अस्ते जे तसे जे प्रतीक हस्ता चिन्ह हस्ता से किए प्रतीक चिन्ह हस्ता कि अख पहे अंतर को जे बणोरा शेर हस्ता और जे की शक्ति औद्योगिकी प्रतीक है और राष्ट्रीय गौरव को गौरव भी से दर्शाता। तो एज ए सरकारें जो उत्पादन लिंक्ड प्रोग्राम अस्ते जो प्रोत्साहन देन दिया ने जे इतना कंपनी के स्थानीय विनिर्माण दी कम लोरा करना और प्रोत्साहन देना गुरी। थोड़ी बहुत चुनौतियां भी अस्ती कई क्षेत्रीय अंतर बेहतरीन सफलता के बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद जे GDP अस्ता से विनिर्माण क्षेत्र अंतर तसे हिस्सेदारी तय लक्ष्य के 25% पुजान दी अभ्यंतकर व्यापारिक जे ढांचागत चुनौतियाँ तसे बनी रह रही। तो मौके गल थी हमें दो जय लाई राजकुमार राज प्रभाकर आवाज़ अंतर बेदेन लोकगीत आई तुणस लोकगीत फिर लें दो हरी गलबात।

शांति विष्ठा वाजन त्रिवेद लोकगीत हैं सुने वाड़े शुरू जरूर चाव नहीं रघुणा सुने वाड़े केंद्र सरकारे स्कीम अस्ती कि मेक इन इंडिया भारत सरकारे अख प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम अस्ता जथंतर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2014 अंतर लॉन्च के थे अंत ऐसे मुख्य उद्देश्य भारत अंतर जे वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है जे केंद्र अस्ता से बदलना है एज ए पहल अस्ते घरेलू तथा विदेशी दुहियाँ दुन जे निवेश अस्ते तने बढ़ावा देना है और देशे अंतर जे रोजगार अवसर जे तसे पैदा करने आए ऐसे मुख्य उद्देश्य है कि जे विनिवेश तथा से सुगम बनाना और नवाचार यानी इनोवेशन बढ़ाना रिसर्च अंतर जे नए विचार और प्रोत्साहन

राज प्रभा आवाज इंद्र बदे लोकी थे सुने बड़े सुनो जरूर आनंद निरभ होना सुने बड़े में तुझे तो गल आन लगी कि श्री माता मिंदलवासनी जयत पवित्र छड़ी यात्रा जयत आजकल चलो रही है पैंगे धेर वार्षिक मिंदल माता पवित्र छड़ी यात्रा 2026 जे आयोजन जे भवन अगो थे से 1 जून क्या 6 जून तक पहला चरण पहला जत्था घेण थे दूसरा जत्था जे से 6 जून क्या 12 जून तक रे और चे का जे जत्था घेण आई से मतलब 12 जून क्या 20 जून तक भून आई अजय यात्रा अस्ती जम्मू कश्मीर डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ क्या शुरू होती और हिमाचल प्रदेश जे जनजातीय क्षेत्र जिला चंबा पांगी घाटी जे स्थित ऐतिहासिक मिंदल माता मंदिर तक रे यात्रा पुजती यात्राई जे मार्ग अस्ते से कार्यक्रम अस्ते से आयोजन अस्ते से पूरा शेड्यूल बने प्रशासन बनौरा अस्ता और अजय धार्मिक यात्राई संचालन जे इता आदि शक्ति देवी चंडी के सेवक संस्था यानी के बलासु डोडा द्वारा तन्हें आयोजन जे तन्हें किए रास्ता मतलब पूरे तरीके जे तौर तरीके जे पूरे तठनी व्यवस्थाई जांच पड़ताल करके प्रशासन जे अपू तारतम्य बिठाई करके से गाड़ी जे ता हर दिन जे ता तस हिसाब गाड़ी जे से लगाते मुख्य मार्ग जे अस्ता से जम्मू कश्मीर डोडा उधमपुर बट्टल बलिया चौक और किश्तवाड़ भूनते हुए हिमाचल प्रदेश जे पांगी घाटी किलाड़ क्षेत्र अंदर प्रवेश भूनती पवित्र गंतव्य जे अस्ता तसे जे हैं श्रद्धालु अस्ते छड़ी जे अस्ती पांगे घाटी जे मिंदल गांव अस्ता से तड़ी स्थित माँ भगवती मिंदलवासिनी जे चमत्कारिक मंदिर अस्ता तड़ी पूजती किलाड़कियाँ लगभग 25 किलोमीटर दूर तो ऐजे गल थी मैं तुझे जे लाई धार्मिक ऐसे महत्व अस्ता माताई जे मंदिर अस्ता जे काली जे माता जी अस्ती समर्पित अस्ती पौराणिक कथा भी एक विधवा थी घुगती नाम है और सतपुत्र थे तसे और कुछ अपू जे मतलब ब्याहले से कुशलाण ब्याह से कुशलाण थे और त्यो से गबर भगवान दी गए थे और तेने अपू गबरों की हक दी कि भाई चूल्हा फूटी के चौन न थोरी गबरों तस चीज मजाक बनावा और माँ भगवती जे तस चीज नाराज भई करके तेने सतपुत्र के नपुत्री करके और से शाप दता कि तेरी खब्बल जगह अस्ती तड़ी ब्याज पत्थर शापित भई करके पत्थर अंदर तद्दी लाई तो अजय माता भगवती जी अंतिम इच्छा थी कि भाई जे बूढ़ी थी तैनी बोलो कि भाई माँ अभी इच्छा पूरी कर मुँह भी तब्दील कर लेकिन माता ही बोलो कि मुँह क्या पहले जे तसे ताँ पूजा भूनती और तना पुथा माँ पूजा भूनी है आज भी से परंपरा जे तसे चलो रही है अख बधेले बाणुआई पूरे संसार अंतर और मंदल से ग्रां आस्ता अख बधेल बाणुआई बिस्तर जे तसे पलंग पुट कोई नोंगता और ऐतिहासिक स्तंभ जे तो राजा पृथ्वी सिंह थे तन्हें जे ता तड़ी दुर्गम घाटी अंतर अपू यात्रा की थी और अख तांबे थाड़ और भूमिदान जे तसे तन्हें दुतोर थी ने छोटी गीत प्रेम सिंह तथा तन्हें साथी के आवाज अंतर

ये था पंगवाली कार्यक्रम। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है लोकगीत, आवाज़ है सरिता भुशहरी की।

राखी छे भी घरी गया रूप सिंगार तेरी काम चुट्टा तू चुट्ठे तेरे लारे मोदला।

अभी आप लोकगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिम्मेवार ठहराया है। हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यही नहीं, पूर्व भाजपा सरकार ने आय के संसाधन जुटाने की भी कोशिश नहीं की। इसके विपरीत तत्कालीन जयराम ठाकुर सरकार मौजूदा सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर चली गई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का सारा वित्तीय सिस्टम गड़बड़ा गया है और अब मौजूदा सरकार इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की देनदारियां चरणबद्ध ढंग से दे रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है।
1: जो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार। सबसे पहले तो जयराम जी और इनकी जो सरकार 5 साल रही है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार कोशिश करेगी रेवेन्यू जनरेट हो, जो ये पिछली लाइबिलिटीज है, जो कर्मचारी के एरियर्स है, पेंशन की, मेडिकल रिइम्बर्समेंट है और चीजें, वो हम देने की कोशिश सरकार कर रही है और बहुत हद तक जो है इसको दिया भी गया है। बीजेपी तो राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता नीरज भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों से सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती के आरोपों ने साबित कर दिया है कि सरकार में लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव परिणामों ने ये साबित कर दिया है कि जनादेश सरकार के खिलाफ है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा पहले सैलरी डेफर करने और इस फैसले को वापस लिए जाने पर कहा कि सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे लिया था। इस बीच जिला परिषद के चमियाना वार्ड से रिकॉर्ड मतों से जीते खुश विक्रम सेन ने आज शिमला में जयराम ठाकुर से अपने कार्यकर्ताओं सहित भेंट की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से हिमाचल को सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के हिस्से के तौर पर ही पैसा मिल रहा है और राज्य को किसी प्रकार की विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिली है। विनय कुमार ने आज शिमला में कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार

0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपने सभी दायित्वों को पूरा कर रही है और सभी कर्मचारियों की देनदारियों को चरणबद्ध ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वो प्रदेश हित में केंद्र से हिमाचल को विशेष आर्थिक मदद दिलवाएं और RDG को भी बहाल करवाएं। कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत रामपुर जल विद्युत परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा UAV के संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग शर्मा ने कहा कि पावर हाउस, स्विचयार्ड, सुरंगों, ट्रांसमिशन सुविधाओं और अन्य संबद्ध प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन का अनाधिकृत संचालन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परियोजना की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर और FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए सुने कांगड़ी कार्यक्रम।

सुनपति ने सखियां दी आवाज़ा थी। कार्यक्रम जो अगे बधांदे होए गल करनी असा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे च। दिखो जी, प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम की शुरुआत 3 अप्रैल 2018 जो हुई थी। भारत से वादा कर दी महंगाई कने घट आमदनी के कारण कई लोग अपना इलाज नहीं कराई पाते। कुसी भी गरीब माणुए ताई इतनी महंगाई दे जो है दवाई का खर्चा चुकना जो है बड़ा मुश्किल होता है। इस स्कीम का यह भी मकसद है कि हर माणु जो सस्ता इलाज मिली सके, सस्तियां दवाई मिली सकन, कने दवाई सरकारी जन औषधि केंद्रों च मिलती हैं। दिखा जी, समय पर दवाई मुहैया कराना इसका जो है खास मकसद है। इस स्कीम के एक खास मकसद इस गलाई सकते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने ताई आवेदक जो आवेदन पत्र सौंपी 5000 रुपये की फीस जमा कराना पौंदी, जिहड़ी वापस नहीं हटती है। जनासा उद्यमी दिव्यांगजन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कने नीति आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वाकांक्षी जिले के किसी भी व्यवसाय से आवेदन पत्र सौगी फीस नहीं ली जाएगी। दिखा दी, केंद्र खोलने ताई एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत करना पौंदे हैं। कहना आवेदन पत्र सौगी आधार कार्ड की कॉपी हुई, पैन कार्ड होया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र सौगी जो लगाना पौंदा है। कहने सौगी सौगी फार्मासिस्ट पंजीकरण दस्तावेज, पिछले 2 साल की आयकर रिटर्न, कने पिछले 6 महीने

ये था कांगड़ी कार्यक्रम। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है लाहौली कार्यक्रम।

जुले नमस्ते गीत तंजनांग मो इनी हिंची पछाई दो आकाशवाणी शिमला ची गजपई प्रोग्राम दो तिमरिल नंग यंपो स्वागत लिखत आकाशवाणी शिमला की थे प्रोग्राम रो थन हिंजी थेना विषय बुंठे फेके सुई एरी समाज टबर नंग युल की विकास रोक ची जुड़ाई के येश थन की फेस महिलाओं की बदलती भूमिका और समाज हेश ते की समाज की प्रगति थजुई युल की लक्ष्मी रोर स्थिति रोक ची की अमेश थेना लोची इंछो की तिकी क्य लो नंग मीति शिक्षित की अमेश यदि लक्ष्मी ती लो नंग टबर मीगी छाई मी जी शिक्षित की अमेश थे बुनते लक्ष्मी की विकास लक्ष्मी के जुई मिश बल्कि समाज छाई की विकास की अमेश अगर हिंग जी चू न दुरे लो रोकन नंग लक्ष्मी जुई लेन क्यूमई लेन नंग टबर जो कंचक के जिसी मितनीस क्यों मई देखभाल लिख जा बेते जो कंच नंग टबर की बुनठी जिम्मेवारी थे छाई लक्ष्मी के जुई लेन ते चियन छो मगर तालजी थे जिम्मेवारी होश में ग्यूंशी ते चियन छो समाज रो लक्ष्मी जो छाई चोक से प्रतिभा नंग डीमेन अवसर मखुशीश टाइम नंग यंपो लोक चा नोई बसल नोई ग्यूंशी की येश जागरूक के येश नंग लक्ष्मी जी राई पहचान लिख चा चुकशीश थन लक्ष्मी जी क्यों मई लेन के जी सीमित मेश बल्कि लोकचा तकनीक मनखांग प्रशासन राजनीति खेल सेना व्यापार नंग मीडिया चौक से हिती क्षेत्र और रेग्यूंशी भूमिका निभाई लिख चीश शिक्षा जी थे तेजी लेखित तुस गिबोन थे तेजी भूमिका तेयश दुरे रोकची थन से मिक्षी मुदर सांग कॉलेज एलियन छो तेजी बसल तेजी शिक्षा प्राप्त लिख चीन छो राय करियर एपो लिख चेन छो लोकचा लक्ष्मी जो रो आत्मविश्वास द चेन छो राय अधिकार बोंठे जागरूक लिख चेज नंग राय फैसला राय थिंचुम की क्षमता द चेज थन लक्ष्मी की बंती बंती लेन लिख चेन छो ख लेन क्यों लिख चीनी थजूरे लक्ष्मी जी रे लिख चेन छो लक्ष्मी की थन डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक नंग पुलिस पब वकील नंग तेजी तेजी अफसर ग्यूरियश नंग एरी समाज रो योगदान दचियश अफसर ग्यूरी ग्यूरी तेजी तेजी लेन रे लिख चेन छो राजनीति रो रे लक्ष्मी जी भागीदारी नोई के येश पंचायत जो रो रे लक्ष्मी जी पोंठे आरक्षण दचियश लेक्स की लक्ष्मी जी सरपंच ग्यूरजी लेक्स की विकास री रे हेश नंग आई न समस्या की समाधान वंजी तेजी भूमिका निभाई लिख चीश खेल की क्षेत्र रो रे भारत युलगी लक्ष्मी जी युलगी मिन रोशन लिख चीश क्रिकेट बैडमिंटन मुक्केबाजी कुश्ती एथलेटिक्स नंग हिती आई न क्षेत्र रो रे लक्ष्मी जी एपो प्रतिभा कंच रुखुक्शीश थे चाय रुकन जी रमिन सुटाइम गीत से मेक शो रिप्रेरणा खुक्शीश नंग राय सपना रूपुरा लिखचा बोंठे साहस खुक्शीश सेना नंग सुरक्षा रो रे लक्ष्मी जो एपो भागीदारी तेयश थन लक्ष्मी जी सीमा रक्षा नंग यंपो हिती ग्यूंशी जिम्मेवारी रे एपो लीजी निभा

Aylıkçıyış. Terokçi hinjo te haguşa günşiş ki şamtanan yogyata gikhal ling ramimiş. Artık şetir rore lasmiji yogdan noy keyiş. Tan tezi tezi sankhya ro lasmi savrozgar shui yogya startup nang hiti banti banti len rokchi jurai keyiş. Rai likshi business di leks ki lasmi jo sashak likchum ro tezi bhumi kateyish. Len likcha dawa kamai likcha lasmi jo samman nang atmavishwas dachiyish. Edi Himachal Pradesh ki bonte phenang. Kya lasmi ji ridang gi len pashupalan nang paryatan sokse len nana yogdan dachiyish. Pahari jivan gi chunoti yam potabar gi yasha nang rai nang tsai gi zimewari epo li ji nibhai likchiyish. Eri Pradesh ki lasmi ji shinda daji len likcha thip na jodde nang atmanirbar girmen gi hoshit me tezi udharan tiyish. Sarkar ji lasmi gi epoi bonthe banti banti yojna wanchi niish. Jese beti bachao beti padhao sukanya samriddhi yojna nang pradhan mantri ujwala yojna chokse yojna lasmi nang chemek nisper gi jivan epo likcharo yato likshiyish. Te yojnai udeshya khaej lo nang lasmi jo shiksha swasthya suraksha nang arthik avsar dacha hesh. Than gi bakta lasmi ji halat ro sudhar ta niish. Magar the nang yampo bardu re niish. Samaj ki khachi jaga ro than re se mek nang bucha bala kong bedbao likshin cho. Kyukchi kyukchi umar do bakston likchin cho chemek sho chhui lokcha da chien cho nang than gi bakta chemek lasmi ji surakshit re mayesh the chai samasya hing jo kancha ro khukshu len likcha office ro office jo ro chai danda len nang afsar rik madashin cho the chai samasya rokchi samadhan kanun ke zui rokchi kya mimin थे समाज की मिजिस रुक्षी के मिश हिंजोत से में नंग बुचा रुडंडा अवसर दच गुनशीश लस्मी से में की शिक्षा रो प्राथमिकता दच गुनशीश थनसाई दुथे हा गुशाहेश की युल की विकास संभव क्या रिबोन थे क्या नंग लस्मी बलाकुंग डंडा अवसर दच गुनशीश तालजी बलाकुंग भेदभाव लिखचा हुश में मारीश युल की प्रगति युल की मीत साई जो संसाधन रो निर्भर किएश नंग लस्मी भागीदारी बिना विकास समग्र विकास की कल्पना लिखचा ठुपचुमेश लस्मी जी टवर रो के जी कंचा नंग ताल जी बोंठे लेन लिखचमेश बल्कि राष्ट्र रो शिक्षण लिखचा बोंठे रे होश में तेजी तेजी भूमिका नीश ताल मुंशी ठोपा ज्ञान दच ठुपचीश डॉक्टर के जी मीजो जीवन दचीश वैज्ञानिक गुरजी नुई नुई आविष्कार लिखची ठुपचीश खिलाड़ी गुरजी युलगी गौरव बढ़ाई लिखचीश नंग नेता के जी समाज रो दिशा कंची ईश लक्ष्मी की लिखशी भूमिका ती की सामाजिक लिखशी मेश बल्कि एरी एपो मिजुम की क्रांति दीश हिंसाएं दो यंपो के अच्छी एरी वातावरण एपो लिखचा गुई से मिक्शो लुकचुम गुंशी के मेश लस मिठाई दो सम्मान खुशुज नंग युल गी मिठाई दो इज्जत खुशुज थे लब्जा नंग यंपो ललती हिंकते एओ चुके सांगा लागे रामदेव कपूर की थिरची ललती।

तिकी योजनाएं बूंदे फेंके थे योजना तिकी होश में क्योंशी सरकारी योजना तीश योजना मीन दीनदयाल अंत्योदय योजना हिश थे योजना समाज की छाई बसल गरीब मतई पजी नांग युंशी तई मी जो आत्मनिर्भर केरे बूंठे हिश ताल जो थे योजना या तो लिख चहेश इरी यूरो खची बास्तो विकास लिख च बूंठे सस सस योजना जी लिख ची एंछो लेकिन समाज रो थे ना जगह रिनीश गुई थे ठोपा योजना की लाभ मखुशीश थे ठोपा मी जो जुड़ाई लिखचा नंग आत्मनिर्भर लिखचा बूंठे भारत सरकार जी दीनदयाल अंत्योदय योजना चुकशीश थे योजना मीन विचारक नंग राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गिमीन रोकची भूशीश पंडित

दीनदलाय उपाध्याय गी फैस तिहेश की युल की प्रगति युल की छाई बसिल गरीब मते पजी मीचे एपो लीकचा थे यर तो निर्भरेश थे मिजिस रो अंत्योत्य लोचियन छो थजु खहेश लो नंग समाज की छाई बसिल मते पजो टबर जो की मीत मीचे रो चूना एपो लीकचाश द थे योजनाई गी मुख्य उद्देश्य गरीब टबर जोरो रोजगार दच कौशल विकास नंग सब रोजगार की अवसर दच हैश ताकि थे मीजी गरीबी रोक ची फिला वंच नंग एपो मीचे दच थे योजना निस्किंग भाग थी येश राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन थे नाना वही वही नंग क्युक्सी क्युक्सी लेक्स बोंठे नीश नंग दरुंग राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लो नंग थे नाना तेजी तेजी यूल रेश थे निस्पिर भाग की उद्देश्य गरीब नंग मते डबर जोरो डबर गी मी जोरो लेन दच डव कमाई लिखचा नंग ताल जो आर्थिक रूप रुकची शिचन लिखचाश लेक्स जो थे योजनाई भूमिका बोंठे फ्यानंग ग्रामीण भारत रो छाई बसल तेजी संख्या रिदांग लेन जी नंग क्युक्सी क्युक्सी लेन लीजी कमाई लिखची पहिए जो खचिबा लेन मई जी होश मई बातो रे थांगशा दचीश थे समस्या की हल वंचर थे समूरो लक्ष्मी जी क्युक्सी क्युक्सी डवा बचत लीजी थे समस्या की हल वंचर थे समूरो लक्ष्मी जी राय लिखी सेल्फ हेल्प ग्रुप लोकची हेंचो थे रो लक्ष्मी जी क्युक्सी क्युक्सी डवा बचत लीजी नंग युनशी बक्तंग लोन उथिन जी राय लिखी लेन लिखची हेंचो थे युल दो लाखो लक्ष्मी जी थे ठोपा समूह यम्पू जुराई के येश आर्थिक रूप रोकची शिचन के येंछो तालसी सिलाई बुनाई लालेन पिलसी लंगजा मधुमक्खी योजी मशरूम उत्पादन नंग सस सस ठुपची लेन लीजी राय रो आत्मनिर्भर लिखची एंजो दीनदयाल अंत्योदय योजना की संदेश विकास की लाभ युलगी मीर रेरे रो खुक्ष होश में गुंशीश लोच जबकि की गरीब मी नंग ताल की टबर आत्मनिर्भर क्या नंग लक्ष्मी ती राय बंग दुष्यं ठुप नंग युवा छाई छाई रो राय कौशल विकास रो ध्यान दर्जी रोजगार लेन गी लेन लेन नंग व दल्ले थे दीनदयाल अंत्योदय योजना की सपना पूरा क्यमेश थे योजना हिंग जो हित बुचा रो यतु लिखचीश की असल प्रगति छाई गी मीचे बारतो मई छाई दो डंडा सुविधा खुक्ष्यू हेश थे योजना बोंठे छाई दो जागरूक लेनी मते पर जो यतो लेनी थे भावना नंग यंपो हिंग छाई दो तिकी क्याजी लेन लिखचा होश में गुंशीश द थे नंग यंपो थे फैस ख्या खोम जी द जनगणना 2027 की बोंठे फेंके हिमाचल प्रदेश रो क्यूमाई सूची लिखचा नंग छाई की गिनती लिखचुम गिलेन 16 जून रुकची 15 जुलाई 2026 अस्तो गमेश स्वयं जानकारी पिंचा लो नंग क्यूम क्यूम रो एल जी सर्वे लिखचा ठीक 15 दिन दूरे 1 जून रुकची 15 जून अस्तो यूल गिमी छाई राई जानकारी ऑनलाइन पिंचा ठुपची एंजो थे फारम पिंचा बोंठे मी जो सर्व करना पोर्टल sesensusgovernment.in रो एल जी राई पता दचा ठुपची एश थे जनगणना मोबाइल नंग हिती ऐप रुकची डिजिटल रुकची क्यमेश थे नाना लेन लिखची पर मोबाइल रुकची पता इकट्ठा लिखचू छाई बसल तेजी चरण दो क्यूम गी हालात टबर छाई दो खुक्षी चु सुविधा नंग टबर जोगी तेई चु संपत्ति छाई गी बुंठे 33 सवाल सूचूश जनगणना कानून 1948 की तहत छाई की निजी पता जी प्राइवेट बुचूश थे मी छाई की जानकारी थे नाक तुमेश सरकारी लेन नंग रिसर्च लिखचा बोंठे लिखचुश दहे ललती हेनकते कुलंग महिला मंडल थिची ललती गेमुर शिशु

दथनगी समाचार हिंकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राइस तो केंद्र सरकार की सफल चुनी लोगी पूरा किया जी उपलक्ष्य रो विश्वास की विकास की चुनी लो गरीब कल्याण की चुनी लो प्रोग्राम दो हिस्सा तीन चा बुंठे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी उची चुनी नंग चुसुम दो जून दो शिमला की निस्किंग दिन रो दौर की रेजिंग हिश भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य जी लोशियश की 12 जून रो नड्डा शिमला रो स्वच्छता अभियान रो भाग थिंचमिश थे कोची विकसित भारत संकल्प सम्मेलन रो समाज की बनती बनती वर्ग रो संबोधित लिखचुश 13 जून रो मीडिया की मीजियम पो नंग फ्यमिश दरुं केंद्र सरकार की यतोजी हिमाचल प्रदेश रो विकास लिखचबुंठे ग्यूनशी फेस छाए दोपता दची लुत्ता सोलन जिला की जनगणना की बुंठे होश में तैयारी चुकशी नीश जनगणना निदेशक दीप शिखा की अध्यक्षता रो थन सोलन की लेन लिखची पर जो जनगणना की बुंठे ग्यूनशी फेस सचुम नंग थे लेन की एपो लीजी लिखचुम की अवगत लिखता दीप शिखा जी थे मौका रो जनगणना निस्किंग चरण लो लिखचुम लुत्ता थे जादो सब गणना की

लिन रे क्यमेश लोता। 16 जून रुकची, 15 जुलाई की बलाकुंग, क्यूमई कंचुम की लेन रे क्यमेश। थे लेन की बुंठे लगभग 18,600 लेन लिखचिपा फिल रो तैनात क्यमेश लोता। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम रो भारत सरकार जी पद्मश्री पुरस्कार रुकचि सम्मानित लिखता। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम बिहार रो नीचूर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय रो कुलपति वीसीएस। ताल कृषि वैज्ञानिक हेश नांग ताल दो थे क्षेत्र रो होश में एपो लेन लिखच बोंठे थे पुरस्कार यंपो सम्मानित लिखचियन छो। डॉक्टर गौतम जी थे युलगी जर्म प्लाज्म रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेमवर्क सुक्षियेश ताल बिलासपुर जिला की रोकची हेश। द थे नांग यंपो थनगी थे समाचार क्या खोमगते। द थे प्रोग्राम की आखिर ललहिन कते।

स्वागत है आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला पर। सात बजकर 10 मिनट हो चुके हैं। लीजिए पेश है किसान और बागवान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा
1: और मैं दिनेश ठाकुर।
0: तो दिनेश, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया शर्मा जी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे और हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने कृषि और बागवानी के कार्य को अच्छी तरह से कर रहे होंगे।
0: तो दिनेश, क्या क्या कार्य चले हुए हैं आजकल कृषि में?
1: इन दिनों हमारे किसान भाइयों के खेतों की अगर हम बात करें तो उनके खेतों में गर्मियों की सब्जियों की काश्त उन्होंने कर रखी होगी, जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, कद्दू वर्गीय सब्जियां, खीरा वर्गीय सब्जियां जो है लगी है
0: जी।
1: तो किसान भाइयों, समय रहते आप इसमें निराई गुड़ाई के कार्य को पूरा करें और साथ ही सिंचाई की उचित व्यवस्था करें और छोटे पौधों को सुबह और शाम के समय जो है पानी आपने जरूर देना है।
0: जी बिल्कुल दिनेश, तो क्या कुछ खास लेकर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में बता देते हैं। आज हम काम की बातों में बात करेंगे सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में बीजामृत बनाने की विधि के बारे में, और इसके साथ ही हमेशा की तरह लोकगीतों से करवाएंगे आपका मनोरंजन और जानकारी पूर्ण बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं। विषय रहेगा टमाटर के रोग, कीट और उपचार।
1: जी बिल्कुल शर्मा जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काम की बातों में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में बीजामृत बनाने की विधि के बारे में। किसान भाई, ये बीजामृत जो है आप बना सकते हैं और ये पौधों की प्रारंभिक अवस्था के दौरान कीड़ों और रोगों से फसल को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करता है।
0: जी,
1: बीजामृत से बीजोपचारित करने के बारे में अगर हम बात करें तो बीजों की अंकुरण क्षमता इससे बढ़ती है, बीज की जल्दी से सुप्तावस्था टूटती है, बीजों में उम्र बढ़ने के निरोधक समाप्त होते हैं और बीज दीर्घायु हो जाते हैं। बीजों में एक समान अंकुरण होता है और प्रारंभिक अवस्था से ही मौसमी कीटों और रोगों से बचाव किया जा सकता है, साथ ही बीजामृत से स्वस्थ पौधे उगते हैं।
0: जी बिल्कुल दिनेश, और इसको बनाने के लिए सामग्री जो चाहिए वो बता देते हैं। पानी इसमें लगेगा 20 लीटर, देसी गाय का मूत्र 5 लीटर, देसी गाय का गोबर 5 किलोग्राम और चूना 50 ग्राम, खेत या मेढ़ या फसल की जड़ के पास वाली मिट्टी लगेगी 1 मुट्ठी। और बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, आपने क्या करना है कि पानी में गौमूत्र मिलाने के बाद इसमें ताजा गोबर मिलाना है। अब इसमें आप चूना भी मिला दें। इस पूरे घोल में 1 मुट्ठी खेत या मेढ़ की जड़ के पास वाली जो मिट्टी है वो भी आपने मिला देनी है, और सभी सामग्रियों को मिलाने के बाद इस घोल को आपने लकड़ी की सहायता से धीरे धीरे घुमाकर मिलाना है। इसको छांव में बोरी से ढककर आप रात भर के लिए रख दें और इस घोल को 24 घंटे रखने के बाद बीजों पर उपचारित करें।
1: जी बिल्कुल शर्मा जी, और साथ ही भंडारण अवधि काल के बारे में बात करें तो तैयार होने के 24 घंटे के बाद बीजों को उपचारित करें। उपयोग विधि की बात करें तो बीजामृत का उपयोग भिन्न भिन्न फसलों में इस तरह से किया जा सकता है। अगर बात करें अनाज वर्गीय फसल और दलहनी फसलों के बारे में तो अनाज वर्गीय जिसमें कि धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा और दलहनी फसलों के चयनित बीजों को फर्श या देशी गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर फैलाकर अंदाजे से बीज पर बीजामृत छिड़के, बीज को दोनों हाथों से मलकर छाया में सुखाकर बीज आपने बोने हैं।
0: जी बिल्कुल दिनेश, और दलहनी फसलों पर किस तरह से आपने इसका प्रयोग करना है? दलहन के बीजों का छिलका पतला होने के कारण हाथों से रगड़ने पर निकल जाता है। आपने इस बीज को फर्श

0: पर फैला देना है और अनुमान से बीजामृत छिड़कें। दोनों हाथों की उंगलियां फैलाकर बीजों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करके मिलाएं और छाया में सुखाकर ही बीज को बोएं। मूंगफली और सोयाबीन की बात करें तो इनके छिलके बहुत पतले और संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनके बीज लें और उनको घन जीवामृत की 10% मात्रा लेकर धीरे धीरे मिलाएं।
1: और साथ ही शर्मा जी बात करें गन्ना, केला, आलू, हल्दी, अदरक में किस तरह से बीजामृत उन्होंने करना है, तो इसमें किसान भाइयों चयनित फसल के बीजों को बांस की टोकरी में रखकर टोकरी को बीज सहित कुछ क्षणों के लिए बीजामृत में डुबोकर निकाल ले। इसके बाद आपने बीज लगाने हैं। सब्जियों की बात करें तो पैकेट से बीज को निकालकर ठंडे पानी से धोकर बीजामृत से संस्कार कर छाया में सुखाकर आपने उसके बाद बिजाई करनी है। फलों की बात करें तो फलों के बीजों को भी सामान्य तरीके से ही बीज उपचारित किया जा सकता है।
0: इसके बाद बात करें पॉपुलर, सहजन, खाने का पान, काली मिर्च इत्यादि में किस तरह से प्रयोग करना है, तो आपने इन बीजों को बांस की टोकरी में रखना है और फिर बीजामृत में डुबोकर ही बिजाई करनी है। पौधशाला की बात करें तो पौधशाला में बीज डालने से पहले बीज का संस्कार करना है, उसके बाद ही रोपाई करनी है। पौधशाला से पौधे निकालकर उनकी जड़ों को बीजामृत में डुबोकर उसकी रोपाई करें। और किसान भाइयों कुछ एक बातों का ध्यान आपने जरूर रखना है। बीजामृत बनाने से पहले आपने सिर्फ गाय के गोबर का ही इसमें उपयोग करना है। गोबर जितना ताजा होगा उतना अच्छा होगा और गोबर जो है वो 7 दिन तक का प्रभावशाली होता है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही किसान भाइयों यदि आपके पास बैल है तो आधा गोबर बैल का मिला सकते हैं, लेकिन अकेले बैल का गोबर नहीं होना चाहिए। भैंस और जर्सी गाय का मूत्र वर्जित है। गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना ही लाभकारी रहेगा और बूढ़ी या देसी गाय जो दुग्ध उत्पादन नहीं करती हो उसका गोबर और मूत्र अति उत्तम होता है, इसलिए इसको तैयार करने के लिए देसी गाय सबसे अच्छी रहती है।
0: जी, बीजामृत बनाने के लिए खेत की मेड़ की मिट्टी या फिर फसल की जड़ों के पास की मिट्टी ही आपने लेनी है। खेत के चारों ओर मेड़ की मिट्टी जहां किसी भी प्रकार का रासायनिक अथवा कृत्रिम कीटनाशक या फिर खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया गया हो, उस मिट्टी को सजीव मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के उपयोगी जीवाणु मौजूद होते हैं।
1: जी बिल्कुल शर्मा जी। तो ये तो रही कुछ एक जानकारी बीजामृत के बारे में। अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देंगे घन जीवामृत के बारे में। किसान भाइयों घन जीवामृत जीवाणु युक्त सूखी हुई गोबर का जामण है, जिसे बुआई के समय या पानी के 2 से 3 दिन बाद भी दे सकते हैं। ये फसल की सभी गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताएं प्रदान करता है। इसके उपयोग करने से कृषि भूमि में 2 से 3 ट्रॉली गोबर के खाद की और केंचुए की खाद और यूरिया या डाई अमोनियम फास्फेट डालने की आवश्यकता नहीं रहती।
0: और इसके लाभों की बात करें तो घन जीवामृत जीवाणु युक्त सूखी गोबर भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। ये भूमि की उर्वरक क्षमता में सुधार भी करता है। इसके उपयोग से फसलों को ऊर्जा मिलती है और सीमित सिंचाई और वर्षा ऋतु आधारित क्षेत्रों में भी फसलों को बहुत अच्छा लाभ जो है घन जीवामृत पहुँचाता है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही किसान भाइयों घन जीवामृत बनाने की विधियों के बारे में बात करें तो घन जीवामृत को किसान अपने खेत पर ही तैयार कर सकता है। इसको तैयार करने की 3 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले देसी गाय का सूखा गोबर 100 किलोग्राम, गुड़ या फलों का गुद्दा 1 किलोग्राम, बेसन 2 किलोग्राम और देसी गाय का मूत्र आवश्यकता अनुसार आपने लेना है।
0: विधि की बात करें तो देसी गाय का सूखा गोबर लें। अगर बैल देसी हैं तो 50-50 किलोग्राम गोबर गाय और बैल दोनों का आप ले सकते हैं। इसमें 1 किलोग्राम गुड़ या मीठे फलों का 1 किलोग्राम गूदा और 1 किलोग्राम बेसन डालें। अगर गोबर सूखा है तो इसमें थोड़ा गौमूत्र डालें। अब इसको फावड़े या कस्सी से अच्छी तरह मिलाकर छाया में रख दें और ध्यान रखें कि अगर शीत लहर यानी के तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उसे बोरी से ढक दें, नहीं तो ढकने की जरूरत नहीं होती। इस पर बारिश का पानी और सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए।
1: जी बिल्कुल शर्मा जी। और बात करें उपयोग विधि के बारे में तो इसका उपयोग 48 से 96 घंटे में तैयार करने के तुरंत बाद किया जा सकता है। यदि कड़ाके की ठंड है तो 4 दिन आपने रखना है और 4 दिन बाद इसका उपयोग तुरंत किया जा सकता है। भंडारण अवधि काल के बारे में बात करें तो इसका उपयोग 1 वर्ष तक किसान भाइयों आप कर सकते हैं, लेकिन घन जीवामृत को भंडारण हेतु तैयार करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना

0: आवश्यक है। भंडारण के लिए 48 से 96 घंटे क्रियाबंद होने के बाद इसको कड़ी धूप में पतला करके सुखाना है। दिन में दो बार उलट पुलट करें ताकि सभी हिस्से को सूर्य की बराबर रोशनी मिल सके। इसके बाद लकड़ी के मुंगरे से अच्छे से पाउडर बना ले और बालू वाली छलनी से आपने इसको छान लेना है। फिर इसको जूट की बोरी में बांध कर रख दे और भंडारण के लिए बोरी को सीधे भूमि के संपर्क में ना रखे, लकड़ी के तख्ते पर आपने इसको रखना है।
1: जी बिल्कुल दिनेश, दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो इसके लिए सामग्री आपको चाहिए 1 एकड़ के लिए देसी गाय का छाना हुआ सूखा गोबर 200 किलोग्राम और जीवामृत चाहिए इसके लिए 20 लीटर। बनाना किस तरह से है आपने किसान भाइयों? तो कड़ी धूप में सुखाया हुआ और बारीक करके छन्नी से छाना हुआ गोबर आपने लेना है। इसको थोड़ा सा फैलाकर इस पर जीवामृत का छिड़काव करें और इसको अच्छी तरह फावड़े से मिलाकर 48 से 96 घंटे तक छाया में ढेर लगा दें। 48 से 96 घंटे के बाद कड़ी धूप में सुखाएं और दिन में दो बार उलट पलट करें। इसके बाद ये तैयार हो जाता है और इसका प्रयोग आप 1 वर्ष तक कर सकते हैं।
0: किसान भाइयों, बात करें गोबर गैस स्लरी के बारे में, तो इसके लिए किसान भाइयों आपको गोबर गैस स्लरी उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और दुर्गंध मुक्त पोषक तत्वों से भरपूर उर्वरक का उत्पादन करना है। गोबर गैस स्लरी में जीवित जीवाणु नहीं होते, जिस कारण जीवामृत बनाने में उपयुक्त नहीं है। इसको घन जीवामृत बनाने में उपयोग किया जा सकता है। बनाने के लिए सामग्री की बात करें तो गोबर गैस प्लांट से निकला गोबर 50 किलोग्राम, देसी गाय का गोबर 50 किलोग्राम, गुड़ या मीठे फलों का गुद्दा 1 किलोग्राम और बेसन की मात्रा 1 किलोग्राम आपने लेनी है।
1: जी बिल्कुल, और बनाने की विधि इस तरह से है। गोबर वायु संयंत्र से बाहर निकालने वाले घोल को कड़ी धूप में आपने सुखाना है। अच्छी तरह सूखने पर इसे आप लकड़ी की मोगरी की सहायता से इसका पाउडर बना लें।
0: जी बिल्कुल शर्मा जी, तो ये तो रही कुछ एक जानकारी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में बीजामृत और घन जीवामृत बनाने की विधि के बारे में।
1: जी
0: अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को लेखराम पाल और साथियों की आवाज में सुनाएंगे एक लोकगीत।

0: किसान भाइयों, लोकगीत के बाद अब आपको इंतजार होगा जानकारी पूर्ण बातचीत का। आज जो आपके लिए जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण लेकर आए हैं, उसका विषय है टमाटर के रोग, कीट और उपचार, जिसमें डॉक्टर पूजा भरमेरा से जानकारी हासिल कर रहे हैं राम कुमार शर्मा।
1: किसान भाइयों, आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में हमारे साथ है डॉक्टर पूजा भरमेरा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में स्वागत है। किसान भाइयों, आज डॉक्टर साहब हमें जिस विषय में जानकारी देंगे वो है टमाटर की फसलों के रोगों के बारे में।
2: टमाटर हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से नकदी फसल के तौर पर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों जैसे सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी में मई जून के माह में बरानी फसल के रूप में अथवा फरवरी मार्च में सिंचाई की सहायता से उगाई जाती है
1: जी।
2: इसके साथ साथ निचले पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर कांगड़ा व बिलासपुर जिलों में जून जुलाई में बरानी फसल तथा मई जून में सिंचाई की सहायता से किसान टमाटर की पैदावार से आमदनी कमा रहे हैं। टमाटर में कई रोगों और कीटों के आक्रमण से पैदावार में कमी किसानों को समस्या पैदा करती है। आज इस बातचीत के माध्यम से टमाटर में होने वाले विभिन्न रोगों और कीटों के आक्रमण तथा उसके रोकथाम मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी
1: जी। डॉक्टर साहब, टमाटर की फसल के मुख्य मुख्य रोग जो है उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे और उन रोगों के उपचार क्या क्या है।
2: जी राम जी, टमाटर की फसल के मुख्य बीमारियां पौध का कमर तोड़, बक आई रॉट, अल्टरनेरिया झुलसा रोग, पत्तों पर सेप्टोरिया फफूंद के धब्बे, बकाई व अल्टरनेरिया फल सड़न, पत्तों के अन्य फफूंदी रोग, बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरियल कैंकर, टमाटर का शूस्टिंग रोग और चूर्ण लासिता रोग है। इसमें मैं पहले पौध का कमर तोड़ के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जिसका रोग जनक पिथियम अफेनिडर्मेटम है। इसमें बीज से पौधा पैदा होते ही मुरझा जाता है, प्रभावित पौधा जमीन पर गिर जाता है। इसके उपचार के लिए क्यारियों को फॉर्मलिन से रुपाई के 15-20 दिन पहले शोधित करें। बीज तभी बोएं जब मिट्टी से फॉर्मलिन की गंध आनी बंद हो जाए। इसके लिए फॉर्मलिन की मात्रा है 1 लीटर फॉर्मलिन प्रति 7-10 लीटर पानी में
1: जी।
2: क्यारियों को मैंकोजेब 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में या फिर कार्बेंडाजीम 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर रोग के लक्षण देखते ही सींचे। दूसरी बीमारी है बकाई रॉट, जिसका रोग जनक है फाइटोपथोरा पैरासिटिका। इसमें प्रभावित हरे फलों के ऊपर हल्के और गहरे भूरे रंग के धब्बे चक्कर के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसके उपचार के लिए रोग रोधी किस्में लगाएं, पौधों को सहारा देकर सीधा खड़ा रखें, उनके निचले फैलाव में 3-45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के पत्ते मानसून के आरंभ होते ही तोड़ दें, सड़े फलों को नष्ट कर दें, जल निकासी का उचित प्रबंध रखें, फसल पर रिडोमिल एमजेड जो कि 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में उसका छिड़काव करने के 10-15 दिनों के बाद मैंकोजेब इंडोफिल M45 या बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करें। इसके बाद है अल्टरनेरिया झुलसा रोग, जिसका रोग जनक है अल्टरनेरिया लिनरेई। इसमें पत्तों पर गहरे भूरे धब्बे चक्कर बनाते हुए उभर आते हैं जो पत्तों पर पीलापन लाते हैं, फलों पर भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं। इसके उपचार के लिए बीज रोगमुक्त फल से ही लें।

0: बीज का उपचार थिरम 75 WP से करें। पौधों पर 8 से 10 दिन के अंतराल पर हेक्साकैप या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या मैंकोजेब 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी का छिड़काव करें। पौधों पर मैंकोजेब FP की दर 0.55% की दर से 15 दिन के अंतराल पर बीमारी के लक्षण आते ही छिड़काव करें। संपूर्ण रोकथाम के लिए 4 छिड़काव की जरूरत पड़ती है
1: जी।
0: इसके अलावा पत्तों पर सेप्टोरिया फफूंद के धब्बे, बकाई व अल्टरनेरिया फल सड़न है जिसका रोगजनक सेप्टोरिया लाइकोपर्सिसी है। इसके उपचार के लिए फसल पर मैंकोजेब 75 का 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की मात्रा में 3-4 छिड़काव करें। मैंकोजेब 75 WP और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बारी बारी से छिड़काव करें। फसल पर बेलीटॉन या इंडोफिल M45 25 ग्राम प्रति 10 लीटर या बेनिफल या बेनेट या सॉफ या इंडोफिल M45 का 15 दिन के अंतराल में 3 बार छिड़काव करें, जिनकी मात्रा 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी, 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी तथा 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी है।
1: डॉक्टर साहब, बैक्टीरियल बिल्ट में टमाटर की रोग प्रतिरोधी किस्में क्या क्या है?
0: जी राम जी, ये किस्में हैं सोलन वज्र, पालम पिंक, पालम प्राइड, पालम टोमेटो हाइब्रिड 1 या फिर हिम पालम टमाटर हाइब्रिड 2। इस बीमारी का रोगजनक है राल्स्टोनिया सोलनेशियम, जिसमें पौधे किसी भी अवस्था में मुरझा जाते हैं। इसके लिए 3 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं, जिसमें टमाटर प्रजाति की फसल ना हो। रोग मुक्त तथा स्वस्थ पौध का ही रोपण करें। इसके अलावा अगली बीमारी है बैक्टीरियल कैंकर, जिसका रोगजनक है क्लेविवेक्टर मिशिगनेसिस सब स्पीशीज मिशिगनेसिस। इसमें निचले फैलाव के पत्ते मुरझा जाते हैं, तने पर भूरे रंग की धारियां और फलों पर सफेद रंग से घिरे छोटे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं
1: जी।
0: इसके उपचार के लिए रोग मुक्त स्वस्थ पौध लगाएं, रोगी पौधे उखाड़ कर नष्ट कर दें, 3 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं और ऐसी फसल उगाएं जिस पर इस रोग का प्रभाव ना हो। टमाटर में एक विषाणु रोग भी है जिसका नाम शू स्ट्रिंग रोग है। इसमें पत्तियां विशेषकर आकार में मोज़ेक नमूने बनाती हैं तथा नीचे को मुड़ने लगती हैं। पत्तों के अग्रभाग तंतु जैसे हो जाते हैं। रोगग्रस्त पौधे पर देरी से फूल आता है तथा फल छोटे रह जाते हैं और इसका रोगजनक है क्यूक्यूम्बर मोज़ेक वायरस
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे टमाटर की फसल में इस प्रकार का रोग लग जाए तो उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे?
0: जी राम जी, इसके रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे S12 लगाएं, रोग को आश्रय देने वाले खरपतवार जैसे धतूरा तथा मक्को को निकाल दें और इसमें मेलाथियन 50 EC के घोल का छिड़काव तेला का नियंत्रण करने के लिए करें, जिससे यह बीमारी फैलती है
1: जी।
0: क्योंकि तेला इस वायरस का वेक्टर की तरह काम करता है
1: जी।
0: इसके अलावा जो अन्य रोग टमाटर की फसल में पाया जाता है वो है चूर्ण लासिता रोग, जिसका रोगजनक ओडियम लाइकोपर्सिकम है। इसमें फफूंद के कारण पत्तों के ऊपर के हिस्से पर धब्बे पड़ जाते हैं। पहले यह हल्के रहते हैं पर बाद में बीमारी बढ़ने पर एकत्रित होकर बड़े बन जाते हैं। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मरने लगते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने लक्षणों के बारे में हमारे किसान भाई को जानकारी दी। डॉक्टर साहब, अब इस रोग की रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना है?
0: इसमें किसान भाइयों को पौधों में बीमारी के लक्षण आते ही हेक्साकोनाजोल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी से छिड़काव करना है। इसके पश्चात डाइनोकैप 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर किसान भाई इसका फसल पर छिड़काव करें। 10 दिन के अंतराल पर एक अन्य छिड़काव फिर करें
1: जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें जानकारी दी टमाटर की रोग प्रतिरोधी किस्मों के बारे में। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि टमाटर की फसल में कौन कौन से फफूंद रोग लग जाते हैं और इन रोगों की रोकथाम के लिए उन्हें क्या करना है?
0: टमाटर के फफूंद रोग जिसे मैंने पहले भी बताए वो है चूर्ण लासिता रोग, बकाई रॉट, सेप्टोरिया के दाग धब्बे और पौध का कमर तोड़। फफूंद रोग के उपचार हेतु संयुक्त छिड़काव की सारणी मैं किसान भाई बहनों के साथ साझा करूंगी। बिजाई से पूर्व क्यारियों को बिजाई से 20 दिन पूर्व फॉर्मलिन 1 लीटर प्रति 7-10 लीटर पानी से शोधित करें
1: जी।
0: बीज स्वस्थ फलों से ही लें। बीज को थिरम 75 WP या हेक्साकैप 75 WP से उपचार करें
1: जी।
0: रोपाई के समय निरोग पौध का रोपण करें। पौधों को सहारा देकर सीधा रखें और नीचे के 15 सेंटीमीटर भाग पर पत्ते ना रहने दें
1: जी।
0: रोपाई के बाद और मॉनसून से पूर्व पौधों पर मैंकोजेब 25 ग्राम प्रति 10 लीटर या बोर्डो मिश्रण, चूना 80 ग्राम नीला थोथा 10 लीटर पानी में डालकर या ब्लाइटॉक्स 50 या फाइटोलान 10 का छिड़काव करें। फल आने पर प्रभावित पौधों व फलों को नष्ट कर दें। पौधों पर रिडोमिल MZ 10-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स 50 या मैंकोजेब इंडोफिल M45 का छिड़काव करें
1: जी।
0: पौधों में फल तोड़ने से 8 दिन

0: पूर्व अगर कंपेनियन का एक छिड़काव किया जाए तो तोड़ने के पश्चात फफूंदों द्वारा बीमारियों को नियंत्रण में रखा जा सकता है और फल स्वस्थ रहते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें जानकारी दी फफूंद रोगों की रोकथाम के बारे में। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि टमाटर की फसलों में कीटों का आक्रमण भी होता है और उन कीटों का प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान और बागवान भाइयों को करना है।
0: जी राम जी, टमाटर की फसल में मुख्य कीट हैं फल छेदक, फल मक्खी, कटुआ कीड़ा और रूट नॉट नेमाटोड।
1: जी,
0: फल छेदक के आक्रमण में इसकी सुंडियां कोमल पत्तियों पर पलती हैं और बाद में छेद करके फल के अंदर पलने लगती हैं। इसके लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, कराटे 5 EC को 100 लीटर पानी में घोलकर फूल आने के समय छिड़काव करें। इसके बाद फल मक्खी यह फल में अंडे देती है और फिर इसका प्रकोप फल के अंदर फैल जाता है और फल खाने योग्य नहीं रहता।
1: जी,
0: इसके लिए किसान भाई बहन मई जून में जब कीट के प्रौढ़ फसल पर दिखाई देने लगे तभी उन्हें आकर्षित करने हेतु 50 ग्राम खांड या गुड़ और मेलाथियन 10

0: आने के समय छिड़काव करें। इसके बाद फल मक्खी यह फल में अंडे देती है और फिर इसका प्रकोप फल के अंदर फैल जाता है और फल खाने योग्य नहीं रहता
1: जी।
0: इसके लिए किसान भाई बहन मई जून में जब कीट के प्रौढ़ फसल पर दिखाई देने लगे तभी उन्हें आकर्षित करने हेतु 50 ग्राम खांड या गुड़ और मेलाथियन 10 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसमें किसान भाई बहन पालम ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: इसमें कुछ सावधानियां भी किसान भाई बहनों को बरतनी है जिसमें पौधों पर छिड़काव करने के बाद 15 दिन के बाद ही फल तोड़ें। रोगग्रस्त फल एकत्र करके मिट्टी में दबा दें या किसी ऊपर बताए गए कीटनाशी रसायन द्वारा नष्ट कर दें।
1: जी।
0: इसके अलावा कटुआ कीड़ा जो गंदी भूरी सुंडियां भूमि में छिपी रहती हैं और रोपण के समय से ही पौध के कोमल तने को रात के समय मिट्टी के धरातल के बराबर वाले स्थान से काट देती हैं और इससे फसल को भारी हानि पहुंचती है। इसके लिए किसान भाई बहन खेत को तैयार करते समय 80 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस 20 को 1 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति कनाल में अच्छी तरह मिला दें और गली सड़ी गोबर की खाद का ही प्रयोग करें।
1: जी।
0: अंत में जो कीटनाशक टमाटर की फसल को बेहद नुकसान पहुंचाता है वो है रूट नॉट निमेटोड। ये सूक्ष्मदर्शी जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं। इसके प्रकोप में जड़ों में गांठें बन जाती हैं, पौधों के ऊपरी भाग पीले पड़कर मुरझा जाते हैं तथा पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है। इनका प्रभाव खेतों में टुकड़ों के रूप में दिखता है। अधिक प्रभावित फसल या पत्तों का मुड़ना और दिन में अस्थायी तौर पर मुरझाना इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके उपचार के लिए किसान भाई बहन रोगग्रस्त खेतों में टमाटर और इसके वंश के अन्य पौधे जैसे शिमला मिर्च, लाल मिर्च, बैंगन, आलू आदि फसल लेने के बाद तुरंत दूसरी फसल ना लें। खेत में फेरबदल के लिए अनाज वाली फसलें ही उगाएं। रोगग्रस्त खेतों में 2-3 वर्ष के लिए इसकी प्रतिरोधी किस्में जैसे कि S120 ही लगाएं। सूत्रकृमि रहित पौधशाला से ही पौध लें तथा प्रतिवर्ष पौधशाला का स्थान बदलें। और इसके अलावा किसान भाई बहन ग्रसित खेतों को 2 किलोग्राम फोरेट के दाने प्रति कनाल के हिसाब से डालकर ही खेत में डालें।
1: जी। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी टमाटर की फसलों में कीटों का आक्रमण और उसकी रोकथाम के बारे में। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान और बागवान भाइयों को टमाटर की खेती के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे?
0: किसान भाई बहनों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि फसल की बीमारियों में छिड़काव करते टाइम व जो छिड़काव के मुख्य नियमों का पालन करके अपनी सेहत और फसल की सेहत का ध्यान रखें
1: जी।
0: और कृषि से कोई भी समस्या का समाधान लेने के लिए कृषि विभाग से जुड़े रहें।
1: जी। तो किसान भाइयों, डॉक्टर पूजा भरमेरा जी ने हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में आकर हमारे किसान और बागवान भाइयों को टमाटर की फसलों के रोगों के बारे में जानकारी दी। निश्चय ही हमारे किसान और बागवान भाई इस जानकारी का फायदा उठाएंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में आए और आपने हमारे किसान और बागवान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद राम जी।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था टमाटर के रोग, कीट और उपचार। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर पूजा भरमेरा और उनके साथ बातचीत कर रहे थे राम कुमार शर्मा। अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को समूह स्वरों में सुनाएंगे एक और लोकगीत।

0: किसान भाइयों, ये तो आपने सुना समूह स्वरों में लोकगीत। तो दिनेश, अब इसी लोकगीत के साथ समय भी हो चला है हमारे इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने का। अपने सभी किसान बागवान भाई बहनों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत, सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला।
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों में अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
2: थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। आकाशवाणी
2: नियमों शर्ते लागू।
0: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारे तराने, कुछ नए तो कुछ पुराने। कुछ आज ऐसे ही नगमे लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जहां हम और आप रहेंगे साथ साथ। लेकिन कब से? जी हां, रात्रि 8 बजे से लेकर ठीक रात्रि 11:10 तक बने रहिएगा हमारे साथ FM शिमला पर।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर और FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है और DTH सेवा पर भी ये समाचार उपलब्ध रहेंगे।
2: 57 कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि 57 कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाए हिमाचल के हित के मुद्दे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नीरज भारती के आरोपों से उजागर हुआ सरकार का भ्रष्टाचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में RDG सहित हिमाचल के हितों के मुद्दे उठाए। उन्होंने प्रदेश के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने RDG बंद होने के बाद प्रदेश को दिए गए 25,000 करोड़ रुपए की राशि को नाकाफी करार दिया और विकास गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस राशि को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। ईरान के हॉर्मुज जल डमरू में एक भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में हमीरपुर जिला के गलोड़ के रहने वाले नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदित्य शर्मा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर मुमकिन सहायता देने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा

0: दिया है। सोलन जिला में जनगणना के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर है। जनगणना निदेशक दीप शिखा की अध्यक्षता में आज सोलन में कर्मचारियों को जनगणना का प्रशिक्षण दिया गया और इस कार्य की बारीकियों से अवगत करवाया गया। दीप शिखा ने इस मौके पर कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इन दिनों स्वगणना का कार्य चल रहा है।
1: फर्स्ट फेज जो है वो 16 जून से 15 जुलाई के बीच में चल रहा है और हमारा इसमें स्वगणना का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत की कोई भी जो हमारा जनमानस है, आम जनता है, वो स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in पे जाके उस पे FAQs दिए हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपनी मोबाइल नंबर के थ्रू उसमें एंटर करके अपनी लोकेशन मार करके 33 जो प्रश्न है आधिकारिक रूप से उनके आंसर भर सकते हैं पोर्टल पे। तदुपरांत उनको एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होगा, जिसको की प्रगणक जब हमारे 16 जून से 15 जुलाई के बीच में आएंगे तो उनके साथ शेयर करेंगे और फाइनली वो उसको एक बार वेरीफाई करके पोर्टल पे सबमिट कर। पूरे हिमाचल में हमारे करीबन 18,600 के करीब करीब जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगी है।
0: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधारीकरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री आज शिमला में अटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल चमियाना में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में रोगी कल्याण समिति के 2026-27 की अनुमानित आय और व्यय के अनुमानों को मंजूरी दी गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को घर द्वार पर उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। जगत सिंह नेगी ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिम्मेवार ठहराया है। हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को RDG के रूप में 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब मौजूदा सरकार इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की देनदारियां चरणबद्ध ढंग से दे रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है।
2: जो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार। सबसे पहले तो जयराम जी और इनकी जो सरकार 5 साल रही है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार कोशिश करेगी रेवेन्यू जनरेट हो, जो ये पिछली लाइबिलिटीज है, जो कर्मचारी के एरियर्स है, पेंशन की, मेडिकल रिइम्बर्समेंट है और चीजें, वो हम देने की कोशिश सरकार कर रही है और बहुत हद तक जो है इसको दिया भी गया है। बीजेपी तो राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस नेता नीरज भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों से सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती के आरोपों ने साबित कर दिया है कि सरकार ने लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनादेश सरकार के खिलाफ है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा पहले सैलरी डेफर करने और इस फैसले को वापस लिए जाने पर कहा कि सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे लिया था। इस बीच जिला परिषद के चमियाना वार्ड से रिकॉर्ड मतों से जीते खुश विक्रम सेन ने आज शिमला में जयराम ठाकुर से अपने कार्यकर्ताओं सहित भेंट की। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौतम ने देश का प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क शुरू किया है। वे बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिला की तीसा उपमंडी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि इस उपमंडी के शुरू हो जाने से क्षेत्र के किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद बेचने

0: के लिए अब घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष दिलदार अली बट ने इस मौके पर जिले के सभी किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने और सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन मूल्य का लाभ उठाने की अपील की। पंचायत समिति जुब्बल के आज संपन्न चुनाव में कांग्रेस समर्थित कमलेश झक्ता को अध्यक्ष और लोकपाल शरखोली को उपाध्यक्ष चुना गया। ये चुनाव निर्विरोध हुए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने गुणात्मक स्कूल शिक्षा के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। धर्माणी आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगार में विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने मंत्री से भी प्रश्न पूछे। धर्माणी ने बाद में एम्स बिलासपुर का दौरा भी किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार एम्स की आपात सेतु पहल को प्रदेश भर में लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि आपात स्थिति में मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से हिमाचल को सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के हिस्से के तौर पर ही पैसा मिल रहा है और राज्य को किसी प्रकार की विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिली है। विनय कुमार ने आज शिमला में कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपने सभी दायित्वों को पूरा कर रही है और सभी कर्मचारियों की देनदारियों को चरणबद्ध ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वो प्रदेश हित में केंद्र से हिमाचल को विशेष आर्थिक मदद दिलवाएं और आरडीजी को भी बहाल करवाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाए हिमाचल के हित के मुद्दे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नीरज भारती के आरोपों से उजागर हुआ सरकार का भ्रष्टाचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं।
2: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
3: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
2: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
3: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
2: शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, तहदिल से स्वागत है आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

जनाब हो जाइए तैयार, एफएम शिमला के साथ चलने के लिए एक सुहाना सा सफर हम आपके लिए लाए हैं जिस पर आप और हम मिलकर रहेंगे साथ साथ। तो आइए चलिए हमारे साथ इस शानदार से सफर पर जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारे तराने और होंगी आपसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें भी। लिए चलेंगे आपको उस जमाने में जहाँ दिल की बातें कहीं नहीं जाती थी, बस आँखों आँखों में समझा दी जाती थी और एक दूजे के दिल तक पहुंच जाया करती थी। एक फिल्म की कहानी भी जरूर सुनाएंगे आप सभी को हम, और आपके दिल की आवाज कैसे भूल सकते हैं आपके अपनों तक पहुंचाने के लिए ईमेल बेस्ड कार्यक्रम भी लेकर आएंगे आप सभी के लिए। गीतों के साथ साथ गजलों से सजा गुलदस्ता भी लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए। कुछ सदाबहार नगमे भी चुनकर लाएंगे आप सभी के लिए जिन्हें सुनकर आप भी अपनी मीठी मीठी यादों में खो जाएंगे। तो आइए बने रहिए एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। गर्मी के इस मौसम में ठंडी ठंडी फुहारों को भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर गीतों के माध्यम से। जी हाँ, शिमला की बात करें तो दिन भर की तपती गर्मी के बाद अब ठंडक का जो ये हमें सुकून मिला है ना, उसमें ठंडी ठंडी हवाएं भी है साथ साथ और बारिश की बूंदें भी बस बरसने को तैयार ही है कुछ हमारे गीतों की तरह। तो आज के सुहाने से सफर का आगाज हम करने जा रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के साथ। तो लीजिए आप सभी के लिए हमारी तरफ से कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनाने जा रहे हैं चिराग फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद लीजिए आप सभी इस नगमे का।

शतरंज फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल थे हसर जयपुरी के और संगीत यथा शंकर जयकिशन ने। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ। पत्थर के ख्वाब, जी हाँ, इस फिल्म का गीत पेश करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं हमारे साथ, तो लीजिए लता मंगेशकर को सुनिए नई जिंदगी फिल्म में।

गीत एक ऐसा माध्यम जो सीख भी दे जाए और दिल को भी भा जाए। दिल की धड़कन बन जाते हैं वो गीत जो मोहब्बत के सफर में साथ निभाते हैं। नजरें मिलती हैं जब पुराने किसी तराने पर, तो खो जाते हैं हम उन हसीन लम्हों में। एक और प्यारा सा गीत पेश है आप सभी के लिए आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में फिल्म आदमी और इंसान से।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

गुनगुनाती है शाम, महकती है तन्हाई, पुराने गीतों ने फिर से यादों की महफिल सजाई। जी हाँ, वो जो छूटे थे कभी रास्ते, उन गीतों में जिंदा है जाने कौन सी धुन, आज फिर से दिल कर छू कर आई।

दोस्तों ये गीत है ही ऐसे, जब भी साथ देते हैं ना तो लंबा जो है वो साथ देते हैं। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे आसान कर देते हैं, यदि आप किसी मुश्किल में हैं तो राह को भी आसान बना देते हैं, साथ ही यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो

0: आपके सफर को खूबसूरत बना देते हैं। फिलहाल इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। जल्द ही हाजिर हो रहे हैं लेकर फिल्म संगीत।
1: नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
2: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
0: तो आइए फिल्म संगीत का आगाज करने जा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म के गीत के साथ। सुनते हैं SP बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल को। गीत के बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
2: तुम और हिंदी कविता?
3: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

0: चोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

चंचल खूबसूरत नगमों का आनंद आप ले रहे हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर। दिल फिल्म का गीत पेश करने जा रहे हैं आप सभी के लिए अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में।

ये आवाज़ की दुनिया है दोस्तों, यहाँ गीत संगीत का सफर यूं ही चलता रहता है। और इस प्यारे से गीत के साथ एक और गीत पेश करने जा रहे हैं हम आप सभी के लिए। आइए सुनते हैं क्या कहना फिल्म का ये नगमा अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 9:15 पर फिर से लौटेंगे कुछ और खूबसूरत नगमों के साथ।
1: मत खेलिए।
2: क्यों भला? जाने जा।
0: 103.7 MHz पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। रात्रि के 8:45 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 सुनेंगे न्यूज एट 9। बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर।
3: मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले

0: मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की

0: यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit will provide an opportunity.
2: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
1: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
3: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सभी सुनने वालों को रेखा ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। इस ठंडी सी सुहानी सी शाम में हम और आप हैं साथ साथ FM शिमला पर। जनाब हाजिर हो चुके हैं लेकर हम एक फिल्म से और सुनवाएंगे एक फिल्म की कहानी। तो लेकर चलेंगे आप सभी को एक ऐसी कहानी की ओर जहां बुद्धिमानी, कॉमेडी, रहस्य और भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये कहानी है फिल्म अकलमंद की, जी हाँ, जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखने में सफल रही। रिश्तों की उलझनों, गलतफहमियों और सच्चाई की तलाश के बीच आगे बढ़ती हुई ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सूझबूझ और धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अकलमंद फिल्म के बारे में और भी रोचक जानकारी आप सभी को देंगे, लेकिन आइए सुनते हैं इस फिल्म का वो गीत जिसे शायद आपने भी सुना होगा और पसंद भी किया होगा। तो आइए आपकी यादों को आज फिर से ताज़ा करते हैं।

0: हमारा बन गया। जनाब कहीं यही आप भी तो नहीं कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी भी मायके चली जाए? जी हाँ, ये रिश्ता ही ऐसा है कुछ पति पत्नी का, दूर रहे तो सहा ना जाए और साथ रहे तो भी मीठी मीठी नोक झोंक हो ही जाए।
1: मायके चली गई मेरी बीवी, मायके चली गई।
0: और इस फिल्म के गीतों की यदि बात करें ना, तो रिश्तों की उलझने, जज्बातों की गहराई और जीवन के अनगिनत रंग समेटे इस फिल्म के का जो ये गीत है, संगीत है। कहानी का हर मोड़ अपने साथ एक नया एहसास लेकर आता है और उन एहसासों को सुरों में पिरोने का काम किया है इस फिल्म के गीतों ने।

गीत संगीत की तो बात हुई, चलिए अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म के नायक डॉक्टर किरण यानी कि जितेंद्र और नायिका प्रिया यानी कि श्रीदेवी। प्रिया अपने पति डॉक्टर किरण से बेहद प्यार करती है, लेकिन थोड़ी सी शकी स्वभाव की है। भाई होगी भी, डॉक्टर किरण का स्वभाव इतना चुलबुला सा जो है। एक दिन की बात है, प्रिया अपने मायके चली जाती है। इसी दौरान किरण का दोस्त उसे क्लब डांसर से मिलवाता है। क्लब डांसर एक अच्छे दिल की लड़की है जो अपने अंधी बहन और गूंगे भाई के इलाज का पालन पोषण करने के लिए बेहद जो है वो मेहनत करती है। लेकिन डॉक्टर किरण उसकी मजबूरियां सुनकर उसके प्रति सहानुभूति जो है वो महसूस करते हैं।

दूसरी तरफ एक अपराधी यानी कि शक्ति किसी गैर कानूनी काम में शामिल होता है, जिसके बारे में जो उस क्लब डांसर को पता चल जाता है और उसे बेनकाब करने की कोशिश करती है। यहाँ शक्ति डर जाता है और क्लब डांसर उसके अपराधों का जो खुलासा ताकि ना कर पाए इसलिए उसका पीछा करता है। एक रात भारी बारिश के कारण डॉक्टर किरण के घर पर आती है क्लब डांसर, लेकिन उसी रात उस घर में शक्ति घुसकर जो है उस क्लब डांसर की हत्या कर देता है। सुबह जब डॉक्टर किरण उठते हैं तो देखते हैं वहां पर पड़ी है क्लब डांसर की लाश। जी हाँ, उसकी लाश को देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि पुलिस जो है उन्हें ही हत्यारा समझेगी और उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। इसी कारण डॉक्टर किरण क्लब डांसर की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और जनाब, यहाँ कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर का रूप ले लेती है।

कहानी में एक सस्पेंस आता है और पुलिस जांच शुरुआत कर देती है। जांच की जी हाँ, कई के सबूत डॉक्टर किरण की ओर इशारा करते हैं। डॉक्टर किरण पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगता है। वहीं दूसरी ओर असली हथियारों को खोजने के लिए भी वो साथ कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति में एक साथी जो है वो ज़रूर होता है। और यहाँ पे भी डॉक्टर किरण के साथ उनके शुभचिंतक मेजर अंकल यानी कि अशोक कुमार खड़े रहते हैं। उनकी मदद और अपनी बुद्धिमानी से डॉक्टर किरण और जो है वो धीरे धीरे सच्चाई तक पहुँचते हैं। आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि क्लब डांसर की हत्या शक्ति ने की थी। वे सबूत इकट्ठे करके शक्ति का पर्दाफाश करते हैं और पुलिस असली अपराधी को पकड़ लेती है। दोस्तों, फिल्म के अंत में किरण अपनी पत्नी प्रिया से अपनी गलतियों के लिए जो है वो माफ़ी मांगते हैं। प्रिया भी सच्चाई जानकर उन्हें माफ़ कर देती है। साथ ही किरण जो है वो डॉक्टर किरण जो है वो क्लब डांसर की बहन और गूंगे भाई की जिम्मेदारी उठाने का भी फैसला करते हैं और इस तरह इस फिल्म का सुखद जो है वो अंत होता है।

डियर लिसनर्स, रहस्य, रोमांच, भावनाओं और बुद्धिमानी से सजी ये कहानी आखिरकार अपने सुखद अंत तक पहुंचती है। अकलमंद केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि जीवन का एक संदेश है कि सही सोच और सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन मंजिल हमेशा वहीं मिलती है जहां सच्चाई होती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुन रहे थे, जिसमें आज की हमारी फिल्म थी अकलमंद।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम लेकर जल्द ही हाजिर हो रहे हैं।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

आपके दिल को सुकून पहुंचाएंगे एफएम शिमला के गीत। यहाँ एफएम शिमला पर लेकर आए हैं कुछ ढेर सारे नगमे आप सभी के लिए। यहाँ के मौसम की बात करें तो भाई बेहद ही सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें बरस रही है हमारे गीतों की तरह। हाजिर हो चुके हैं हम आपका मन पसंद कार्यक्रम लेकर, दिल की आवाज भी सुन, तो पहुंचाइए आप भी अपने दिल की आवाज अपनों तक हमारे गीतों के माध्यम से। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए आज की हमारी फिल्में हैं कश्मीर की कली, आवारगी, आई मिलन की रात और आजा नचले। जी हाँ, नए पुराने तराने लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए इस कार्यक्रम में। आजा नचले, आई मिलन की रात, आवारगी और कश्मीर की कली। कोशिश रहेगी कि सभी दोस्तों के नाम कार्यक्रम में शामिल हो सके। गुजारिश करते हैं कि आप हमें ईमेल एक ही बार भेजिएगा। हम वादा करते हैं कि आपका नाम कार्यक्रम में जरूर शामिल होगा, लेकिन फिल्म का नाम लिखना ना भूलिएगा।

आप सब भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो चलिए हम भी वक्त को जाया नहीं करते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपकी प्यारी प्यारी ईमेल्स के साथ। ईमेल भेजी है, भेजने वाले हैं महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। आप सुनना चाहते हैं आई मिलन की रात फिल्म का नगमा, जरूर सुनवाएंगे जी। और भी कुछ ईमेल्स हम तक आई हैं, आइए शामिल करते हैं। उत्तर प्रदेश से ईमेल भेजी है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। आप भी सुनना चाहते हैं कश्मीर की कली फिल्म का गीत, आपको भी सुनवाएंगे हम आपकी पसंद का नगमा। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से इनके साथ शामिल हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और खुद ये ईमेल कर रहे हैं मोहाली चंडीगढ़ से।

खेड़ा परिवार हमें ईमेल भेज रहे हैं। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, आप सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज में गीत। कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश को भी हम पूरा कर सके कार्यक्रम में। पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, जीवन लाल रजक, निम्नी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, रामजी साहू लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून मुरादाबाद से आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पटियाला पंजाब से शामिल हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, आपका भी हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश से ईमेल आई है, भिड़ने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन, कृष्णा, पीहू और इनका परिवार, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, झारखंड से आप शामिल हुए हैं यासीन अनजान के साथ। नागपुर से विशाली, शैलेश गणकर, प्रिंस एकांश, सुमित कुमारी, ध्वनि और परी, महाराष्ट्र से अभिजीत, राही, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत और टुक टुक, आपका भी हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। संभाजीनगर से राजेश साबले, पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, स्वागत करते हैं आपका भी हम कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम का आगाज हम करने जा रहे हैं कार्यक्रम के इस पहले नगमे के साथ। लीजिए सुनिए कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत।

हमारे यहाँ जी हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि बारिश की बूंदें जो है वो हो रही है, और शायद बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ बारिश की बूंदों की ज़रूरत है। तो हम भी दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हर जगह पर बारिश हो जहाँ पर इस वक्त बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, आपको भी थोड़ी राहत मिले हमारी तरह। ईमेल हम तक पहुंची है, भेजने वाले हैं कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसे आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजना, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जलालाबाद वेस्ट से आपने हम तक ईमेल भेजी है। हरछिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश और दीपेश वर्मा छत्तीसगढ़ से आपने हमें ईमेल भेजी है। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। छिपाड़ी रोडू से ईमेल भेज रहे हैं एलआर गुंजेटा, जमींदा गुंजेटा और अनुज मुकुल गुंजेटा। आप सुनना चाहते हैं आई मिलन की रात फिल्म का गीत, जरूर सुनवाएंगे हम आपको भी इस फिल्म का गीत। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत राजस्थान से आपकी मेल हम तक पहुंची है। कश्मीर की कली फिल्म का गीत कार्यक्रम में सुनना चाहते थे। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी

आपका भी स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ से, आपने हमें ईमेल भेजी है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया उत्तर प्रदेश से। पारस मणिवर्मा, हीरा मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा, कुलशोभा कॉटेज सुना पंजाब से, विरोचनपुरी, भारतीपुरी, डॉक्टर के आर पुरी, शोभापुरी, डॉक्टर सौरभ, ज्योति, इताश, परनिका, रिद्धिपुरी और मास्टर वाहिनपुरी कूल कूल इवनिंग लेकर भेज रहे हैं। लालगिरी, हिमलता, हीना, हर्षित और खुशी आप हमें मेल कर रहे हैं और कार्यक्रम की जो है वो तारीफ लिखकर भेज रहे हैं कि आपको बेहद पसंद आ रहा है। शुक्रिया दोस्त, आपका ये प्यार हमें और भी पसंद आता है और हमें भी, जैसे कि आपको गीत पसंद आते हैं वैसे ही हमें भी आपका ये प्यारा प्यारा जो आप हमें अपना प्रेम भेजते हैं ना ईमेल के माध्यम से, ये भी हमारे सीधे दिल तक पहुँचता है।

लीला सिंह, ज्योति सिंह और रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह मेन रोड तेलहारा से, प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर और सुजाता पोहरकर, राम सदोहर, ऋषभ अनुभव सिंह, इंद्रभान सिंह कालरी से, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कलंदरी लहरे, भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक, मुरली क्षत्रिय, आपका भी हम स्वागत करते हैं दोस्त कार्यक्रम में। हरियाणा से जसवीर सिंह जस्सी, अरोड़ा, जतिंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनका परिवार। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, सुनवाने जा रहे हैं FM शिमला पर आवारगी फिल्म से।

0: तो दोस्तों आया ना गीत पसंद। जी हाँ, ये गीत है ही ऐसे जो सीधे दिल तक पहुंच जाए और आपकी दुआएं हम तक पहुंच जाए। असीम दुआओं के साथ और शुभकामनाओं के साथ लिखकर भेज रहे हैं जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। आप सुनना चाहते हैं आजा नचले फिल्म का गीत।
1: ऐसे कैसे सुना दें?
0: गजनन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे, प्रकाश धांडगे, संतोष एस काले, गजनन साले सालोकार, सुरेश पाटिल, आप भी हमें ईमेल भेज रहे हैं महाराष्ट्र से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, मोहम्मद उमर कासमी इसहाक और साथ में अयूब शेरी, आप सबका भी हम स्वागत करते हैं। सुखविंदर सिंह जोधा, सिटी दीवाना, दिल्ली से आपने हमें ईमेल भेजी है। मिंटू टोमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, खेड़ा से आपकी ईमेल हम तक पहुंची है।

0: दिग्दर्शन और कविता गौड़ आप हमें मेरठ से जो है ईमेल भेज रहे हैं। अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, रिजवाना, आज़ाद अली अनवर, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत छत्तीसगढ़ से शामिल हुए हैं। उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल, नंदनी झंगेल, अमित शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, भिलाई से आपने ईमेल हम तक भेजी है। इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सदोहर, नारायण, दिनेश, कालिंद्री, दोस्त आपकी ईमेल हम शामिल कर चुके हैं।
1: मेरे साथिया, तू कोई,
0: जानते हैं हम कि ये गीत इस वक्त आप भी गुनगुना रहे हैं चेहरे पे मीठी सी मुस्कान लिए हुए। हमारे FM शिमला को जब आप सुनते हैं ना अपने नामों के साथ, तो जानते हैं हम कि आपके चेहरे की मुस्कान आ ही जाती है। बस इसी मुस्कान को जो है वो हमेशा बनाए रखिएगा अपने साथ। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, आपके साथ ईमेल और भी आई हैं, शामिल कर रहे हैं। नवाशहर पंजाब से भेजने वाले हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम, जी हाँ डॉक्टर प्रियम, बेबी इनके साथ में और भी शामिल है, वामिका और वाणी, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी, नेपाल नगर मध्य प्रदेश से। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया, आपकी ईमेल भी हम शामिल कर चुके हैं दोस्त, और नए दोस्तों के नाम भी शामिल करने देते हैं। छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल, चंपा साहू, मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन कृष्णा पीहू, शिमंदिर हकीकतपुरा मध्य प्रदेश से। शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिटा बजाज, आपके साथ टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप भी शामिल है, शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभ प्रसाद, जी हाँ शायद शुभम प्रसाद आपने लिखकर भेजा है, और दुर्गेश्वरी जायसवाल।

बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल, खुदा बख्श खलीफा, आप भी हमें ईमेल कर रहे हैं और आप सबका भी हम स्वागत करते हैं। आई मिलन की रात फिल्म का गीत आप इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त एफएम शिमला पर। गजनन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे, प्रकाश दांडगे, गजनन सालोकार, सुरेश, आपकी भी ईमेल शामिल कर दी है और आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को। आशिक

कुलशोभा कॉटेज नाम पंजाब से ईमेल पहुंची है। विरोचनपुरी, भारतीपुरी, डॉक्टर के आर पुरी, शोभापुरी, डॉक्टर सौरभ, ज्योति, इताश, पर्णिका, रिद्धिपुरी और मास्टर वाहिनपुरी की। आप ही के साथ जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी, आप भी स्वागत, जी हाँ आपका भी स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम में।

आई मिलन की रात फिल्म का ये प्यारा सा गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इसी नगमे के साथ प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन में अभी बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला। फिल्मी नगमों की तरफ से अब चलिए अब बढ़ते हैं गजलों की ओर और आगाज कर रहे हैं पंकज उदास की आवाज में। कार्यक्रम की ये पहली गजल पेश है आप सभी के लिए।

गजलों का आनंद आप ले रहे हैं हमारे साथ शिमला पर। अभी आपने गजल सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। आइए मोहम्मद वाकिल की आवाज में पेश कर रही है कार्यक्रम की ये अगली गजल।

गज़लों का आनंद आप ले रहे थे हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। गीतों का ये सिलसिला यूं ही जारी है एफएम शिमला पर। तो आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आप सभी को सदाबहार नगमे। आगाज़ कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत नगमे के साथ। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी को सुनिए ललकार फिल्म से।

सदाबहार नगमे। जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बेहद ही प्यारा गीत। अभी आपने सुना खिलौना फिल्म से। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक और दिल को छू जाने वाला गीत पेश कर रहे हैं आप सभी के लिए कुमार सानू साधना सरगम की आवाज़ों में, जुर्म फिल्म से। जुर्म फिल्म का ये नगमा।

0: बिल्कुल, हमारे दिल से भी यही दुआ निकलती है अपने दोस्तों के लिए कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। और इसी गीत के साथ उपकार फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में आज के इस सफ़र में बस इतना ही। सदाबहार नगमे आप सुन रहे थे आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। रेडियो हम सफ़र थी आपके साथ रेखा ठाकुर। चलते चलते बस यही कहेंगे, खुश रह के अपना ख्याल रखिए। रात्रि के 11 बजने को है आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार। बने रहिए एफएम शिमला के साथ।
1: के साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said, when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on One District, One Product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
2: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the four stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
5: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Hima